करना, पता नहीं क्या लगता है मुझे, फैजान हाशमी साहब का वो शेर याद आता है कि मैं अपनी खुशियां अकेले मनाया करता हूं, मैं अपनी खुशियां अकेले मनाया करता हूं, यही वो गम है जो तुझसे छुपा है मेरा। क्या बात है, मुझे लगता है गम तो क्या, बस ये अजीब सी बात है। आपको भी ऐसा होता है क्या? अगर आप भी ऐसे शख्स हैं जो कि अपना बर्थडे मनाने में हिचकिचाते हैं, मन करता है बर्थडे के दिन की जमीन खुले और आप उसमें समा जाएं, तो लिख भेजें अपना एक्सपीरियंस मुझे मेरे इंस्टाग्राम RJ ताशी मिर्ची पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
3: हाँ.
4: One second, sir. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000.
3: हाँ.
4: One second, sir. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
3: नहीं तो.
4: आपने नहीं किया है?
3: नहीं.
4: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
3: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
4: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
3: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी न कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
4: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
3: मैंने 2 पैसे भी निकाले.
4: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
3: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
4: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
3: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
4: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता आप
3: ठीक बोल रहे ना, वहीं आके बजाऊंगा.
4: आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
3: क्या
4: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
3: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
5: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
4: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
9: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
10: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
9: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
11: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
12: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
16: अब मिर्ची खा.
18: Radio Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, और अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आपका दाशी मिर्ची महफिल पर नजर करे आपको आज का शायर। आज आपको रूबरू करा रहे हैं शमीम अब्बास साहब से। शमीम अब्बास साहब इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो मॉडर्न शायर्स में बड़े विख्यात हैं। मुंबई के हैं, 1948 में इनका जन्म हुआ था। और इनका एक शेर है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। कहते हैं कि याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम, याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम, फिर सुबह तलक सोचते रहते हैं वो क्या थी। अरे रे रे रे भाई, मुझे ADHD है ना, तो मेरा ना ऐसे याददाश्त थोड़ी सी ऐसी रहती है कि मतलब कभी कुछ याद आता है कभी कुछ भूल जाता हूँ। तो मैं तो इस शेर से एकदम कनेक्ट करता हूँ। शमीम अब्बास साहब ने क्या बारीक बात को नोटिस करा है कि याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम, फिर सुबह तलक सोचते रहते हैं वो क्या थी। जिंदाबाद। अगर आपका भी कोई पसंदीदा शेर हो लिख भेजे भाई साहब, मेरे इंस्टाग्राम RJTashi MIRCHI RJTashi मिर्ची पर बिल्कुल। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9170983983, वहां भी बात कर सकते हैं आप मुझसे। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
0: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
3: Oh, no!
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Conditions apply.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
10: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: It's 8:30 PM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपके दाशिके आपके साथ। और एक तरीके का प्यार ये भी बताया गया है लिटरेचर में कि जमाने में ऐसा भी प्यार हुआ है लोगों को कि उन्हें हर जगह अपना प्रेमी दिखाई देता है। माशूक की नजर जो है वो हर जगह माशूक को ही ढूंढ लेती है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, हर जगह उन्हें अपने प्यार की एक झलक दिखाई देती है। चिराग शर्मा का एक शेर नजर कर रहा हूं आपके कि मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब, मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। आय हाय हाय हाय, मतलब शाखें एकदम गुलाब ऑफर कर दे रही है भाई, ऐसा वाला सीन हो जा रहा है। और प्यार में इंसान जो है वो इतना खतरनाक है कि उसे लग रहा है कि आय हाय हाय मेरी माशूक की तरफ से आ रहा है, तो क्यों ना इसे नोच लूं मैं, इस गुलाब को मैं। मैंने कबूल कर लिया चुपचाप वो गुलाब जो शाख दे रही थी तेरी ओर से मुझे। चिराग शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ। अगर ऐसा ही आपको कोई पसंदीदा शेर हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं आरजे ताशी मिर्ची पर, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे 9170983983 पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी करे आपको नजर आज का ताशी अनप्लग्ड। और यार ये गजल जो है मेरी बड़ी पसंदीदा है, ये खयाम साहब की म्यूजिक है, इसमें बेगम अख्तर ने इसे गाया है और क्या तो गजल है दोस्त। दाग दहलवी साहब की गजल का उनवान है उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं। और आप इसकी ने कॉम्पोजिशन खयाम साहब की देखें और बेगम अख्तर साहिबा ने तो क्या ही गाया है, मतलब मैं तो उसका I'm just a lover of this ghazal, तो इसलिए एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से।

गाने में भी है, खयाम साहब की कॉम्पोजिशन थी और ओरिजिनली बेगम अख्तर जी की आवाज में दैट वाज अ दाग दहलवी साहब की लिखी हुई गजल, बड़ी पसंदीदा गजलों में से एक है मेरी। और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो बिल्कुल भाई साहब, मतलब आप बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, कहाँ बोलेंगे मुझसे, मेरे इंस्टाग्राम आरजेताशी मिर्ची पर या फिर मेरे व्हाट्सएप 9170 हाँ क्या 9170983983 पर। बिल्कुल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतूराज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने Spider-Man के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज YouTube पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन Instagram @mirchijeeturaj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू Instagram @mirchijeeturaj। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
6: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और अभी हाल में ना हमारे देश में कई जगहों से ये पुकार आई कि अरे पेड़ काटे जा रहे हैं, इन पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही गुहार थी, बिल्कुल सही पुकार थी। उसी से जुड़ा हुआ अतुल अजनबी साहब का एक शेर आपको मैं नजर करूंगा, जो कि मुझे इतना प्यारा लगा कि नेचर किस तरीके से ना गिविंग है उसके अंदर, बस देना जानता है, बस देता रहता है। अतुल अजनबी साहब कहते हैं कि सफर हो शाह का या काफिला फकीरों का, सफर हो शाह का या काफिला फकीरों का, शजर पेड़ शजर मिजाज समझते हैं राहगीरों का। अब भाई शाह गुजर रहा हो, कोई बहुत बड़ा आदमी गुजर रहा हो, या फिर फकीर गुजर रहे हो, पेड़ समझते हैं कि गुजरने वाले को क्या चाहिए, और वो है थोड़ी सी छांव, थोड़ी सी ठंडक, थोड़े से फल, है ना। सफर होशाह का या काफिला फकीरों का, शजर मिजाज समझते हैं राहगीरों का। जिंदाबाद। ये नेचर जो हमें इतना कुछ देती आई है, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। और आपको क्या लगता है ऐसा क्या करना चाहिए नेचर के लिए, हम क्या कर सकते हैं, लिख भेजिए मेरे इंस्टाग्राम आरजे ताशी मिर्ची पर, या फिर मेरे व्हाट्सएप 9170983983 पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। इट्स ऑल।

0: मिर्ची इट्स हॉट। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है दस्तूर है
2: कविता कॉर्नर।
3: कविता कॉर्नर,
1: क्या आप कैताशी, आपको आज के कविता कॉर्नर में सुनाए दो छोटी छोटी कविताएं। ठीक है, ये कविताएं ट्रांसलेशंस हैं अब्बास के रस्तमी साहब की। अब ये एक ईरानियन फिल्म मेकर हुए, बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर, जो फिल्म की दुनिया से लोग हैं उनको इनका नाम पसंद होगा, या फिर जो देखते भी हैं, शौकीन भी हैं फिल्म्स के, उनको अब्बास के रस्तमी का नाम पता होगा। और उनकी दो कविताएं मैं आपको सुना रहा हूँ, आप बस ये देखें कि इनकी लिखाई में भी कितना विजुअल लिखाई है, कितने ऐसा लगता है देख रहे हो आप सामने। पहली कविता का नाम है हवा। पुराने किवाड़ को खोलती है और बंद करती है जोर जोर से 10 बार। बस ये थी कविता। पुराने किवाड़ को खोलती है और बंद करती है जोर जोर से 10 बार हवा। अगली कविता अलगाव। कहते हैं कि पतझड़ की दोपहर चिनार का पत्ता आहिस्ता से अलग होकर गिरता है अपनी ही परछाई पर। ओए होए होए होए, वो जो अपनी परछाई पर गिर रहा है ना, वो इतना खूबसूरत है। असद जैदी साहब ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है कि पतझड़ की दोपहर चिनार का पत्ता आहिस्ता से अलग होकर गिरता है अपनी ही परछाई पर। बिल्कुल जी, दैट वॉज अब्बास की रस्तमी। और आपने देखा किस तरीके की विजुअल पोएट्री लिखी अब्बास साहब ने, क्योंकि फिल्म मेकर हुए, है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाँ जी, अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से।
1: कि आप कताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपके नजर मिर्ची महफिल में। बिल्कुल जी, और पता है जब यंग थे ना, तो इंसान जब जवान होता है तो बड़ा आइडियलिस्टिक होता है कि अरे बाप रे, मैं तो बिल्कुल सच के साथ हूँ, सत्य के साथ हूँ, सही के साथ हूँ। और मतलब बड़ा होता है तब भी वो मतलब सत्य के साथ रहता है, सच के साथ रहता है, लेकिन फिर ना वो आइडियलिज्म चला जाता है, उसको ना दूसरों के पहलू दिखने लग जाते हैं जब वो बड़ा होता है। तो एक ये उबैद आजम आजमी साहब का शेर मुझे इतना सटीक सही शेर लगा ना, ये कि देखता हूं तो नहीं रहम के काबिल कोई, देखता हूं तो नहीं रहम के काबिल कोई, सोचता हूं तो हजारों पे तरस आता है। भाई क्या गहरा शेर है ये, क्या गहरा शेर है कि मतलब दूर से तो आप गुजर जाएं तो बोले अरे हाँ हाँ ये गलत था, ये सही था, ऐसा वैसा वैसा, लेकिन अगर आपने गलत इंसान के दिमाग में झांक लिया एक बार तो आप उतनी आसानी से शायद उसे गलत ना कह पाए। देखता हूं तो नहीं रहम के काबिल कोई, सोचता हूं तो हजारों पे तरस आता है। जिंदाबाद मिर्ची महफिल, सुन रहे हैं आप, ताशी है आपके साथ। और ऐसा कौन सा किस्सा है जिसमें आपको दूसरे का पहलू दिखा कभी, बताइए मुझे मेरे इंस्टाग्राम आरजे ताशी मिर्ची पर या फिर मेरे व्हाट्सएप 9170983983 पर। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और दोस्त मुझे ना मंजर कशी कहते हैं इसे मतलब सीन सेट करना शायरी में इतना खूबसूरत लगता है जब भी कोई शायर इसको सक्सेसफुली कर पाता है एंड आई थिंक हसन कमाल साहब ने कमाल कर दिया है सक्सेसफुली ये काम कर दिया है वो जो मंजर कशी का काम होता है वो कर दिया है. अब आप शेर देखें कितना खूबसूरत है कि सूरज लहू लुहान समुंदर में गिर पड़ा. आय हाय हाय सीन लहू लुहान है वो क्योंकि सूरज ढलता हुआ कैसा दिखता है. सूरज लहू लुहान समुंदर में गिर पड़ा दिन का गुरूर टूट गया शाम हो गई. भाई साहब मतलब सनसेट को तुम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो. सूरज लहू लुहान समंदर में गिर पड़ा दिन का गुरूर टूट गया शाम हो गई. जिंदाबाद जिंदाबाद भाई मजा आ जाता है ना जिनको सुन के. ऐसा वाला शेर है ये है कि नहीं. स्टेडियम टू मिर्ची आपका दाशी है आपके साथ मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप और अपना पसंदीदा अगर कोई शेर हो तो लिख भेजिए मेरे इंस्टाग्राम आरजे ताशी मिर्ची पर या फिर मेरे व्हाट्सएप 9170983983 पर. इट्स हॉट

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
4: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और मुझे ना विचारधारा के मामले में क्या पसंद है कि कोई इंसान ना किसी का सगा ना हो। होता क्या है कि जब भी कोई किसी विचारधारा का सगा हो जाता है, किसी आइडियोलॉजी का सगा हो जाता है ना, उसको डिफेंड करने लग जाता है या फिर उसको एनालाइज करना छोड़ देता है, वो ना भटक जाता है रास्ते से, क्योंकि वो सच नहीं देख रहा होता। फिर वो देख रहा होता है कि मेरी आइडेंटिटी इस आइडियोलॉजी से जुड़ी है, इस विचारधारा से मेरा सच जुड़ा है और मैं तो इसी को फॉलो करूंगा चाहे जो हो जाए, चाहे वो गलत भी हो। इसीलिए मुझे चिराग शर्मा साहब का ये शेर बहुत पसंद है। कहते हैं मीर तकी मीर बेसिकली एक बहुत बड़े शायर थे, ठीक है, उन्हें खुदाए सुखन भी कहा जाता था, ठीक है। मीर जी इश्क माना कि नेमत नहीं, पर मैं इसको बला भी नहीं मानता। ऑफ कोर्स यार, सारे शायरों की तरह मीर तकी मीर साहब ने भी ये बोला कि भाई सुनो, ये सब प्यार व्यार बेकार है, ठीक है। इन शॉर्ट तो चिराग जी कह रहे हैं कि मीर जी इश्क माना कि नेमत नहीं, पर मैं इसको बला भी नहीं मानता। मानता हूं खुदाए सुखन भी तुम्हें, और हुक्म खुदा भी नहीं मानता। आय हाय हाय, इतनी सटीक लाइन लगती है ना भाई मुझे, ये मेरे जीवन का फलसफा है सच में। अगर मैं किसी आइडियोलॉजी का होता भी हूं ना, कोई आइडियोलॉजी मुझे समझ भी आती है ना, तो मैं उसका होता नहीं हूं। इन शॉर्ट मतलब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यार देखो, खुदा सुखन हो सकता है, हुक्म खुदा तो नहीं होगा। मीर जी इश्क माना की नेमत नहीं, पर मैं इसको बला भी नहीं मानता। मानता हूं खुदा सुखन भी तुम्हें, और हुक्म खुदा भी नहीं मानता। एज सिंपल एज दैट। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म में नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो

0: डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने, वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: ये जाने का वक्त इतना जल्दी आ जाता है ना।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी था आपके साथ एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो। वक्त तो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते दोस्त आपको अपनी पसंदीदा गजल सुनानी तो बनती है, और सुनानी क्या, सिर्फ बजाऊंगा नहीं, गा दूंगा आपके लिए। बिल्कुल जी, दिस इज अ बेगम अख्तर साहिबा की आवाज में ओरिजिनली रिकॉर्डेड गजल, खयाम साहब की कॉम्पोजिशन और दाग दहलवी साहब की लिखी हुई उजराने में भी है। गलतियां माफ करिएगा, कोशिश है, बस पसंद करता हूँ, गजल सुन लीजिए आप।

उम्मीद है पसंद आई होगी गजल, और अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो आप लिख भेज सकते हैं मुझको मेरे इंस्टाग्राम आरजे ताशी मिर्ची पर, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9170983983 पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, ताशी था आपके साथ। इट्स टाइम फॉर मी टू गो, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इस एक फिल्म के पीछे ये फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, जीनत अमान एंड आशा पारेख, सब ना बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर एक फिल्म ऐसी आई जिसकी वजह से शर्मिला टैगोर और आशा पारेख के बीच में ना जय जय हो गई, वो भी पब्लिकली। पब्लिकली बोले तो मतलब सबके सामने नहीं, लेकिन हाँ फिल्म मैगजीन्स ने इनके बारे में जम करके लिखा। कभी कोई फिल्म मैगजीन आशा पारेख का व्यू लिख रही थी और कभी कोई फिल्म मैगजीन एक्चुअली में शर्मिला टैगोर का पीओवी लिख रही थी। वेल कौन सी थी ये फिल्म अभी आपको बताऊंगी, वापस आ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शर्मिला टैगोर का कहना था कि वो फर्स्ट चॉइस थी फॉर दिस फिल्म, और उसके बाद जब उन्होंने एक फिल्म मैगजीन को इंटरव्यू दिया और यही बात कोट कर दी तो भाई घमासान मच गया दो दोस्तों के बीच में, क्योंकि आशा पारेख का कहना था कि वो कभी भी सेकंड चॉइस नहीं थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म कटी पतंग, जिसमें थे राजेश खन्ना जी, शक्ति सामंत ने ये फिल्म बनाई थी। एंड कहते हैं कि भाई शर्मिला टैगोर ने कहा कि ये फिल्म सबसे पहले उनके पास गई थी, शी डिनाइड डूइंग द फिल्म क्योंकि शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, तो फिर वो ये फिल्म कर नहीं पाई एंड इसीलिए फिर इसका रोल गया आशा पारेख को। आशा पारेख ने जब ये आर्टिकल पढ़ा एक फिल्म मैगजीन में, उन्होंने उसी मैगजीन को जाकर के फिर से इंटरव्यू दिया और कहा कि ऐसा कभी भी नहीं था, वो पहली चॉइस थी, शक्ति सामंत उनके पास आए थे ये रोल लेकर के। वेल लेटर ऑन शक्ति सामंत ने ये बात एक्सेप्ट भी की कि उन्होंने सबसे पहले इस रोल के लिए अप्रोच किया था शर्मिला टैगोर को। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कटी पतंग की बातें चलेंगे आज, और इस फिल्म के गाने भी होंगे, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पता है मुझे उस जमाने के गानों की एक बात इतनी खास लगती थी कि गानों में ना सेट्स या फिर विजुअल्स हीरो नहीं होते थे, बल्कि हीरो होते थे लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉन्ग, द हीरो एंड द हीरोइन. अदरवाइज विजुअल्स वर सो सिंपल एंड सो सूदिंग टू आइज. तो अगला जो गाना मैं कटी पतंग का आपको सुनाने वाली हूँ ना, उसमें राजेश खन्ना एकदम नॉर्मल सा कोट पहने हुए हैं, व्हाइट साड़ी में क्लैड हैं आशा पारेख. और आजकल जो विंग लाइनर हम लगाते हैं ना, ये आशा पारेख से ही शुरू हुआ था. मेकअप के नाम पे उन्होंने सिर्फ विंग लाइनर लगाया हुआ है. और उस टाइम पे 90s में चला करती थी ना, पिकनिक मनाते थे हम जाकर के किसी भी ग्राउंड में बैठ जाते थे. सो आशा पारेख एक ग्राउंड में है अपनी सहेलियों के साथ, पिकनिक मन रही है और राजेश खन्ना आने का उनके इर्द गिर्द घूम करके बस कह रहे हैं ये शाम मस्तानी. ये गाना कमिंग योर वे किशोरदा की आवाज, ओनली ऑन पुरानी जीन्स. मैं हूँ श्रेया. फेसबुक और इंस्टा पे यू कैन रीच आउट टू मी, आरजे श्रेया विद लव. दैट्स आरजे SHREYA विद लव इज माय हैंडल.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस टाइम पे ना विलेंस का भी मेजर रोल होता था हिंदी इंडस्ट्री। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड प्रेम चोपड़ा काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि वो एज अ फेमस विलेन एस्टैब्लिश हो जाए, जिससे कि उनके पास फिल्मों के रोल आए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। बट आफ्टर दिस फिल्म प्रेम चोपड़ा और बिंदु जी के पास ढेर सारे रोल्स आते थे। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म कटी पतंग की, राजेश खन्ना एंड आशा पारेख की फिल्म जो की शक्ति सामंत ने बनाई थी। Well, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्म में रोल करने के बाद फाइनली उनका ड्रीम फुलफिल होगा। भाई शोले के बाद तो हर कोई गब्बर बनना चाहता था, तो बस प्रेम चोपड़ा इसी लगन में लगे रहते थे कि एक बार वो किसी तरह विलेन का रोल ऐसे क्रैक करें कि हर कोई उनको विलेन के रोल में एक्सेप्ट कर ले। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड फ्रॉम द फिल्म कटी पतंग। इसके बाद बिंदु और प्रेम चोपड़ा के पास इतने सारे रोल्स आते थे कि फिल्में साइन करते करते दोनों थक जाते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

आशा पारेख फिल्में तो बहुत सारी कर रही थी, लेकिन कोई भी फिल्म उनका ड्रीम, उनका सपना नहीं पूरा कर पा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आशा पारेख की बात कर रही हो, यानी कटी पतंग की बात कर रही हूँ। वेल, आशा पारेख बैग्ड फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म कटी पतंग। आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने, ढेर सारे विद मी श्रेया। और सुनो, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आराम से कह सकते हो, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव इज माई हैंडल।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म कटी पतंग टुडे। वेल, शक्ति सामंत ने डायरेक्ट की थी, काका यानी राजेश खन्ना थे एंड इसमें थी आशा पारेख। अच्छा, आराधना इससे पहले रिलीज हो चुकी थी शक्ति सर की, सो ही डिसाइडेड कि क्योंकि आराधना के गाने इतने सुपर डुपर हिट हुए थे, ही डिसाइडेड कि वो अपनी म्यूजिक टीम सेम रखेंगे, यानी आरटी बर्मन साहब का म्यूजिक रहेगा, आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स रहेंगे और किशोर दा ही सारे गाने जो हैं वो गाएंगे फॉर काका यानी राजेश खन्ना। अब भाई राजेश खन्ना पे जितने भी पिक्चराइज गाने थे वो किशोर दा कटी पतंग के लिए तो गा ही रहे थे, लेकिन एक ऐसा गाना हुआ जिसमें किशोर दा आउट ऑफ इंडिया थे और शक्ति सामंत को ये गाना पिक्चराइज करना था, शूट करना था, तो फिर उन्होंने मुकेश जी को बुलाया और मुकेश जी ने ये खूबसूरत गाना गाया। वेल, इस गाने में एक बोट है, उस बोट पे काका है, उस बोट पे खूबसूरत ब्यूटीफुल लुकिंग आशा पारेख है वो एंड क्लैड इन अ वाइट साड़ी और उनका वो विंग लाइनर भी लगा हुआ है और राजेश खन्ना नाव चला रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नैनीताल की नैनी झील का यू नो सीन है। इसी गाने की तरफ आपको ले जाते हुए मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और बैक टू बैक आज कटी पतंग फिल्म की बात हो रही है। वेल, अगला जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना एक्चुअली में एक बंगाली गाने से इंस्पायर्ड था। आर डी बर्मन साहब ने इस गाने को कंपोज किया था, आनंद बख्शी साहब ने इसको लिखा था और पियानो पे बैठे होते हैं काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख ना उस कश्मकश में है कि अब वो एक विडो हो चुकी हैं, वो इस लड़के की बातों में या इसकी मोहब्बत में नहीं आ सकती, पर दिल कहाँ मानता है ये उनके चेहरे पे साफ दिखता है। सो कहते हैं कि शक्ति सामंत ने जब ये सब्जेक्ट उठाया था तो उन्हें लगा था कि शायद इंडियन ऑडियंस इस बात को एक्सेप्ट ना करे, बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था। बट देन ही रियलाइज्ड कि कुछ अलग करना पड़ेगा लोगों को, समाज को, जो कुछ ऐसी रीतियाँ हैं जो यू नो शुड बी चेंज्ड फॉर बेटरमेंट, वो दिखानी पड़ेगी। और तब उन्होंने बनाई कटी पतंग। इट वॉज बेस्ड ऑन अ नॉवल एज वेल। पुरानी जीन्स पे प्यार दीवाना होता है कमिंग अप राइट नेक्स्ट फ्रॉम दिस फिल्म कटी पतंग। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज। Only on मिर्ची, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओह, आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बिंदु जी को जब डायरेक्टर शक्ति सामंत ने ये बताया कि उन्हें एक डांस नंबर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो बस वो काफी नर्वस हो गई थी, लेकिन वो चाहती थी कि एक ग्रेट फिल्मों में उन्हें किसी तरह एक ओपनिंग मिल जाए। वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती थी, तो उन्होंने इस फिल्म में डांस नंबर करने के लिए अग्री कर लिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ कटी पतंग की, एंड द डायरेक्टर जिन्होंने भाई बिंदु जी को ये बात बोली थी शक्ति सामंत, द मैन हु डायरेक्टेड दिस ब्यूटीफुल फिल्म कटी पतंग। लेकिन जब बिंदु जी को ये ब्रीफ मिली कि उन्हें एक कैबरे परफॉर्मेंस देनी है, और वो काफी नर्वस हो गई। वेल, जब ये गाना सामने आया तो लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल भर देते थे। बिंदु जी का ब्यूटीफुल एंड वेरी हॉट परफॉर्मेंस इन द सॉन्ग मेरा नाम है शबनम। पंचम दाया ने आर डी बर्मन साहब खुद उतरे थे मैदान में गाने के लिए दिस सॉन्ग विद आशताई। इस गाने के बाद बिंदु जी को ढेर सारे ऑफर्स आने लगे। यही गाना कमिंग योर वे। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

शबनम। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो,

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

रोज रात भर शनि बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ एंड आज कटी पतंग की बातें चल रही हैं और इस फिल्म के गाने. वेल, मुझे लगता है कि उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. आशा पारेख जो कि एक विडो थी, वो प्यार तो करती हैं राजेश खन्ना से, लेकिन वो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती. राजेश खन्ना जो उनसे बहुत प्यार करते हैं समाज के चक्कर में, वो अपनी बातें एक्सप्रेस तो करते हैं पर तो उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. वेल, इस फिल्म के बहुत खूबसूरत गाने हैं जिनको आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लिखने वाले हैं आनंद बख्शी और गाए हैं मोस्ट ऑफ देम किशोर दा ने. सो अगला जो गाना है, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री का पहला गाना था जिसमें ब्रेकअप पे जुबान से भले ही कड़वे शब्द निकल रहे हों हीरो के यानी राजेश खन्ना के, पर जब आप इस गाने का पिक्चराइजेशन देखोगे तो मुस्कुरा रहे हैं और अपना गम ना मुस्कुराहट से निकालते जा रहे हैं. ये जो मोहब्बत है, कमिंग अप राइट नेक्स्ट. मैं हूं श्रेया.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

होली पे ये गाना ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और मुझे लगता है कि आरडी बर्मन साहब ने और आनंद बख्शी साहब ने किशोर दाने मिलकर के ना आपको हमेशा के लिए होली का एक गाना दे दिया इन द फिल्म कटी पतंग। वेल, आज इसी फिल्म की बातें हो रही हैं, इसी फिल्म के गाने हो रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप होली सेलिब्रेट करो और ये गाना ना हो। वेल, इस गाने में ना काका यानी राजेश खन्ना कोशिश तो करते हैं कि वो आशा पारेख को कलर लगाएं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आशा पारेख एक विडो दिखाई गई हैं उस ज़माने की, तो ये करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उनको छेड़ते हुए वो बाकी सबको कलर लगा देते, आज ना छोड़ेंगे बस, समझो ली। कमिंग अ राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ कटी पतंग की बात हो रही है और मैं बातें कम इस फिल्म के गाने ज्यादा सुना रही हूँ. वेल जनरली ऑल ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म वर पिक्चराइज्ड ऑन ऑफकोर्स काका यानी राजेश खन्ना एंड फिल्म की हीरोइन आशा पारेख. लेकिन ज्यादातर गाने जो है ना लाइक 10 में से जो 9 गाने हैं, नहीं 8 गाने हैं, वो किशोर दा ने गाए हैं या फिर मुकेश जी ने गाए हैं, यानी दे आर पिक्चराइज्ड ऑन काका. लेकिन एक गाना जो कि लता जी ने गाया है, जो पूरी फिल्म की थीम पे है कि कैसे आशा पारेख जो एक विडो हैं, बचपन में ही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो एक विडो हो जाती हैं, वो चाहती तो हैं कि उनकी जिंदगी फुल पतंग की तरह उड़े, लेकिन क्योंकि समाज में ऐसे रीति रिवाज हैं कि उनकी जिंदगी कटी पतंग हो गई है. एंड इस गाने में ना राजेश खन्ना एक कमरे में बंद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर हो जाए आशा पारेख से, वो उनसे प्यार ना कर बैठे, पर ऐसा होता कहाँ है. दिल और प्यार उस इंसान को ना उसका कास्ट, रिलीजन, उसकी सिचुएशन देख करके नहीं आता, ये तो बस आ जाता है सामने वाले पे प्यार. यही गाना कमिंग योर वे. मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

जान के लाले बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे आ।

Miserable थी उनकी लाइफ, drunkard husband, fighter wife, बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े

मुंडी खोली हंस के बोली जाने तमन्ना अंदर आओ पहले तो कुछ खाओ आओ फिर बिस्तर पे होंगी बातें बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा शौहर बिस्तर छोड़ के भागा कुंडी ताला तोड़ के भागा भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई बंद हो गई सारी लड़ाई नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई रे।

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: तेरा क्या होगा कालिया
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
4: अब मिर्ची का
6: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hard.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes.

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Cadence, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या पुरानी जनरेशन को नई जनरेशन से कंपेयर करना सही है या नहीं, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, क्योंकि हम कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत आम सी सिचुएशन है जो शायद बहुत सारे परिवारों में होती है। मानिए 25 साल का एक लड़का है, घर पे बैठा है, सामने एक टेबल है, टेबल पे वो पैर रखता है, और हम जब छोटे थे हमें हमेशा माँ बाप बोलते थे कि भैया ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पैर तुम टेबल पे उठा के बैठे हो, अच्छी बात नहीं है। अब उस पर एक और सिचुएशन ऐड करते हैं, वहाँ अखबार पड़ा है, अखबार के ऊपर आपने पैर रख दिया, तो हमारे माँ बाप हमेशा कहते थे कि ज्ञान के ऊपर कभी पैर नहीं रखना चाहिए था। अब वो कहता है दादा भी तो करते हैं, आप उनको कुछ नहीं बोलते, तो कहीं ना कहीं ये बात उनको कैसे समझाएं कि दादा शायद इसलिए कर रहे हैं कि वो थके हुए हैं, उनको शायद स्ट्रेच करना है अपना पैर, ये बात कंपैरिजन के तरीके से कैसे समझाई जाए।
4: कई बार हम गलत करके जस्टिफाई कर देते हैं।
3: अच्छा,
4: लेकिन जब हम किसी और को देखते हैं तो हम उनकी अच्छाई क्यों नहीं देखते? किसी को देखना है तो उसकी विशेषता को देखो, और नहीं तो नहीं देखो। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो कर रहे हैं वो राइट है, वो जो कर रहे हैं वो भी रॉन्ग है, पर आप किसी के रॉन्ग को देख करके अपने जीवन में उसको क्यों धारण कर रहे हो?
3: कॉन्वर्सेशन लेवल तक ठीक है, लेकिन जब आपको एक एग्जाम्पल सेट करना घर पे, आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तब शायद वो वाद विवाद में ही चला जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। हाउ डू यू टेल द पर्सन, आप क्या कौन सी बात उसको कहेंगे जिससे उसको समझ में आ जाएगा हाँ ये मेरे लिए भी सही नहीं है।
4: इसलिए बहुत जरूरी होता है हर घर में कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे।
3: वो तो है,
4: मतलब द बेस्ट वे टू टीच समबडी इज बाय एन एग्जांपल।
3: प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच।
4: हाँ, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आप घर के बड़े वो चीज नहीं करते तो नेचुरल सी बात है कि बच्चे के मन में वो चीज एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जो बड़े हैं उनको भी कह सकते हैं।
3: इतना साधारण, इतना सरल नहीं होता सिस्टर श्रेया, मतलब फिर तो कोई भी नहीं सुधरेगा।
4: हमारा काम है गाइड करना
3: जी,
4: हमारा काम है इंस्पायर करना। अब सुधरना नहीं सुधरना वो उस इंडिविजुअल की चॉइस भी होती है, पर कभी भी मन में ये संकल्प ही नहीं करे कि वो नहीं सुधरेंगे। तो आप बोल पॉजिटिव रहे हैं, आप सोच उनके बारे में नेगेटिव रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उनको डिप्लीट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा। नहीं भी हो रहा तो भी आपके मन में यही होना चाहिए, करेंगे, जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल बदलेंगे। डिफिकल्ट सुधारना नहीं है, डिफिकल्ट है पेशेंस। जो चीज मुझे राइट लगती है और हमें होता है बस हो जाना चाहिए ना, ये राइट बात है, इनके भले के लिए, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है, इसमें तो इनका फायदा है, ये सारी चीजें जो है और एक एक्सपेक्टेशन है वो कहीं पर मुझे डिसअपॉइंट कर देती है कि भाई इनके भले के लिए कहते हैं तो भी ये नहीं करते हैं। दैट इज व्हाट इज डिफिकल्ट, टू लेट गो ऑफ दैट एक्सपेक्टेशंस, टू हैव सम पेशेंस एंड टू कंटिन्यू टू हैव गुड विशेस फॉर अनदर पर्सन। आता है चेंज, क्यों नहीं आता।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। Only on Mirchi. It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब पति पत्नी या पार्टनर्स की पर्सनालिटीज अलग हों और वही डिफरेंसेस झगड़े का कारण बन जाए तो क्या किया जाए, आइए सॉल्यूशन जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ, उसकी शादी को करीब 17-18 साल हो गए, मैं अभी भी बहुत खुश हैं, बीवी बहुत अच्छी बहुत प्यारी है, उसको साफ सुथरा रखना घर पसंद है, और मेरा जो दोस्त है वो बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। वो आके अपनी शर्ट कहीं डाल देगा, अपना सूटकेस कहीं रख देगा, वो किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखता, अपनी चाय के कप कहीं रख देगा, पानी का कप कहीं रख देगा, और उसकी वाइफ बोल बोल के परेशान हो गई। तो मैं जब भी उनके घर जाता हूँ, उनका झगड़ा जो होता है वो एक बात पे तो जरूर होता है, और चीजों पे होना हो, उसकी बीवी इतनी परेशान होगी, बोलते अब मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगी, अब तुमको जो करना करो। 3 हफ्ते बाद जब मैं उनके घर जाता हूँ, देखता हूँ घर पे सब जगह सामान ही सामान पड़ा है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कहते मैंने इसको बोलना बंद कर दिया, अब इसको जो करे, अब इसको ऐसे कचरे खाने में रहना पसंद है तो अच्छी बात है, अब मैं भी जब घर जाता हूँ तो घर अच्छा नहीं लगता। तो जब आप इंसान को नहीं बोलते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो भी तो बुरा ही होता है।
4: बोलना तो है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है, ये क्लीनिनेस की एक बात हमने करी, इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। पहली बात, जब दो जने किसी रिश्ते में बंधते हैं, चाहे वो भाई बहन है, हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट बच्चे हैं, उनके संस्कार अलग होने वाले हैं। किसी के अंदर बहुत क्लीनिनेस है, किसी में नहीं है, कोई बहुत इजीली ट्रस्ट करता है, कोई डाउट
3: नहीं
4: करता
3: है।
4: बहुत सारे जो हमारी पर्सनालिटी है वो डिफरेंट होने वाली है। फर्स्ट थिंग, मुझे वो जो डिफरेंट पर्सनालिटी है क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ?
3: कर ही सकते हैं,
4: क्योंकि ये होना ही है। दोनों की जो जर्नी है वो डिफरेंट है, अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, पर्सनालिटी डिफरेंट है, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज, जब दो लोग आएंगे काम करने के लिए या किसी रिश्ते में, वो अलग होंगे, उसमें सही गलत की बात ही नहीं है, वो अलग है। तो पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस कि कुछ संस्कार जो मेरे अंदर है वो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर भी होगा। जस्ट बिकॉज वो राइट है तो वो आपके अंदर भी होगा, ये जरूरी नहीं है। सेकेंड, कुछ ऐसी चीजें भी तो होंगी जो आपके अंदर बहुत अच्छी हैं।
3: बिल्कुल,
4: ये एक दाग है आपके अंदर, पर बहुत कुछ होगा जो अच्छा भी तो होगा। हमारा सारा अटेंशन ज्यादा किस पर होता है?
3: नेगेटिव पे,
4: जो एक नहीं ठीक है। इम्पोर्टेंट है किसी रिश्ते में वो सारी चीजें जो उनके अंदर अच्छी हैं उसके बारे में उनको अवेयर कराए, बोलना शुरू करें, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, जो कुछ भी है जेन्युइनली, उससे उस आत्मा का स्वमान बढ़ता है। हम स्वमान गिराते हैं, आप कोई चीज ठीक से नहीं करते, आप कोई काम ठीक से नहीं करते, आप चाय का कप ठीक से नहीं रखते, आप तौलिया ठीक से नहीं रखते, वो उसकी एक कमजोरी है। पर हम उस एक कमजोरी को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम कहते हैं आप अच्छे इंसान ही नहीं हो। तरीका क्या होना चाहिए? आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके अंदर ये विशेषताएं हैं, आपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाई, उनको अप्रिशिएट किया, फिर धीरे से कहा पर अगर ये भी आप कर सके, दैट पर्सन विल स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। वरना उनकी एक आदत ने इतना डिस्टर्ब किया, उनकी इतनी सारी विशेषताओं का कोई शुक्रिया नहीं है, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, एक कमी ने परेशान किया, उसका चिंतन, फिर उसका वर्णन सबके साथ, उनके दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, फिर उस चीज को आपने फैला दिया, आपने राई का पहाड़ बना दिया, और इसीलिए फिर अब आप किनारा कर रहे हैं तो नेचुरली उसके कॉन्सिक्वेंस तो फिर दिखाई देंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। Only on Mirchi. It's hot.

0: आज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: जब कोई आप पर हंसता है जिससे आपका ईगो हर्ट होता है तो अपने इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड में कैसे बदलें? आइए समझते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: सिस्टर, क्योंकि संस्कारों की बात हो रही है, कभी कभी बहुत सारी चीजें ना आपको बहुत दुख देती है, दिल दुखाती है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो मेरे दिमाग में, अब शायद इतना परेशान ना करे लेकिन बहुत साल पहले की बात है, मेरे दिमाग में चिपकी हुई है। एक बार हम कलकत्ते के ऑफिस के बाहर खड़े थे, कहीं बाहर जा खाने के लिए जा रहे थे पूरी टीम, और एक महिला थी, मेरे ख्याल से ज़्यादा हाइट नहीं थी उनकी, और वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी और हम एक कैब का इंतज़ार कर रहे थे। तो अचानक से गाड़ी आई तो मैंने एक स्टेप पीछे लिया, मुझे नहीं पता था वो मेरे पीछे खड़ी है, तो मेरा पैर जो है वो उनके पैर पे आ गया। उनका इमीडिएट रिएक्शन था, भाई कितने भारी हो तुम, देख नहीं सकते मैं पीछे खड़ी हो। और मैं मुड़ा, मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। भैया अब हमारे आसपास 10-12 लोग थे, वो सब हंस पड़े, और मुझे उतना बुरा उनके चिल्लाने का नहीं लगा जितना उनके हंसने का लगा। बाकी लोग जब हंसने लगे मुझे लगा वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि मैं बहुत भारी हूँ बहुत। और मैंने कहा देखो मैं लंबा हूँ, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, तो मुझे संभलने में थोड़ा समय लगता है। तो आई ट्राई टू डिसिवेट द सिचुएशन, लेकिन वो बात मेरे जहन में घुस गई, क्योंकि वो परेशान हुई, उनको लगी मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, उनकी भी गलती नहीं थी, बट ये मेरे दिमाग में चिपक क्यों गई बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई।
6: अगेन दो बातें हैं, लोग हमारे पर जब हंसते हैं तो ये भी हमें परमात्मा सिखाता है कि कोई मजाक ह्यूमर भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को दुख पहुंचाए। हंसी अच्छी चीज है, मजाक अच्छी चीज है, खुशी अच्छी चीज है, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ समबडी।
5: बट वो कभी कभी क्या होता है, वो इवेंट ऐसा होता है ना कि आप हंस पड़ते हैं कभी कभी, कुछ वाक्य ऐसे हो जाते हैं।
6: बात वो है कि पहली बात तो ये है कि वो कॉन्शियसली नहीं होना चाहिए, आज वो कॉन्शियसली भी होता है,
5: कभी कभी होता है।
6: आज आप देखिए कितने प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ह्यूमर के लिए हम किसी के लिए
5: किसी पे मजाक करते हैं,
6: उनकी बॉडी को लेकर, उनके कपड़े को लेकर, उनके बोलने के स्टाइल को लेकर, फिर उसमें अगर कोई हर्ट हो जाता है तो हम कहते हैं आपको इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए।
5: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
6: आपको इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, कोई कितना सेंसिटिव है और कोई
5: वो
6: आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो जहाँ तक हो सके ऐसा मजाक जो किसी को दुख पहुँचाए वो नहीं करना चाहिए। सेकेंडली जो आप कह रहे हैं कि वो हो गया, उनका कोई भाव ही नहीं था, कभी कभी ऐसी लाइन निकल जाती है और सब हंस पड़ते हैं। तो जब आप इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसा तो कोई उनका भाव ही नहीं था, वो सीन ही ऐसा था कि जिसके कारण नेचुरली एक नेचुरल रिस्पांस में वो सब हंस पड़े हैं, तो फिर आप उस चीज को अपने मन में क्यों इतना बड़ा बना रहे हैं? फिर तो आपका मन धोखा दे रहा है। आपके दोस्त आपको तंग नहीं कर रहे, आपका मन आपको तंग कर रहा है। आपका मन उस चीज को पकड़ करके रिपीट कर रहा है, उससे आइडेंटिफाई कर रहा है और अपने को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो वो तो फिर आपको अपने से रिश्ता जोड़ करके ठीक करने की जरूरत है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: खुद को समय देना ही असली हीलिंग है। चलिए इस बात को अच्छे से समझें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: मुझे याद है एक बार मेरा एक झगड़ा भी हो गया था उससे। मैंने कहा कितनी बार सॉरी बोलूं यार,
5: ये रुइन करता है। और
4: तो उसने कहा जब तक दिल से ना निकले। मैंने कहा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला डायलॉग मत बोल मुझे, क्योंकि वो फिल्में तो मैंने भी देखी है। तो कभी कभी फिल्मी सिचुएशन भी आ जाता
5: है। नहीं, ऐसा होता है जब वो कहते हैं ना जब तक दिल से बोल, जब तक आपने दिल से नहीं बोला, सी बेसिकली वो अभी भी हर्ट है।
4: हाँ।
5: तो इसीलिए वो कहते हैं आपने दिल से नहीं बोला। जिस दिन वो हील हो जाएंगे ना,
4: तब उसको ऐसा नहीं लगेगा।
5: हाँ, तब आप चाहे दिल से बोलो या न बोलो, या
4: उसको फर्क नहीं पड़ेगा,
5: या आप ऐसे बोलने के लिए बोल दो, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। बट जब तक मैं हर्ट होता हूँ, आई नीड समबडी टू ब्लेम ना।
4: तो मैं इस सिचुएशन में कोशिश करूं, अच्छे थॉट्स रखूं, उसके भले के लिए सोचूं और फिर भगवान पे छोड़ दूं।
5: हाँ, यू हैव टू गिव टाइम उस पर्सन को कि वो अपने को हील करे। आपको ये भी बहुत बड़ी एक फ्रेंडशिप है। सी, नहीं तो आप भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना अभी अभी ठीक हो जाए, अभी अभी ठीक हो जाए। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे क्यों बोला, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कैसे ठीक हो जाए। आई एम देयर फॉर यू, अगर कोई गलती हो भी गई, आई एम सॉरी। अभी आपको जब आना हो, मैंने हमने अपनी तरफ से उनको कहते हैं हमारे सारे दरवाजे खुले हैं। आई एम नॉट होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग। मैंने कुछ पकड़ के नहीं रखा है, ना मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है। मेरे लिए आज भी आप वही बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी जब आपको आना हो, फिर वो तो हर व्यक्ति के ऊपर है, वो उसको स्पेस तो हमें देनी ही पड़ती है।
4: तो इस माध्यम से मैं उनका इनिशियल भी VS है, मेरा इनिशियल भी VS है, मैं VS को कह रहा हूँ आई एम सॉरी, मेरे दिल में कुछ नहीं है, आप भला रहें, और जब आपको आना हो जरूर आए, मैं तुम्हारे लिए हूँ, हमेशा रहूंगा।
5: हम हर एक को समझना है कि हमें कोई दूसरा हर्ट नहीं करता है। कोई फीडबैक देता है, कोई ओपिनियन देता है, हम उनकी बातों को ले लेते हैं, हम उसको अपने मन में रिपीट करते हैं, हम उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये सब हम करते हैं। और वो जब पूरी नहीं होती तो हम ही अपने को हर्ट करते हैं। अब आपको अभी छोड़ना है, अभी अभी छोड़ दो। आप अभी अभी छोड़ेंगे तो आप अपने पर एहसान कर रहे हैं। अगर आपको नहीं छोड़ना, पकड़ के रखना है, तो आप अपने को कह रहे हैं मैं और इतना समय दर्द में रहना चाहता हूँ। दैट्स इट।
4: सो दैट्स इट। आई वांट टू से दैट आई स्टिल लव यू VS, सो व्हेनेवर यू रेडी प्लीज डू कम बैक। आई हैव लव्ड यू, आई विल ऑलवेज लव यू। हल्का लगा।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कभी कभी डर आपको झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कुछ ऐसे केसेस जहां मैं घर पे बताना चाहता हूं, मैं अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूं, लेकिन किसी कारण से संकोच है। शायद जो आपने कहा कि वो अटैच्ड हैं, वो खुद मायूस हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो मुझे राय देना चाहते हैं जब मैं सुनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ शेयर करना चाहता हूं। ऐसे केसेस में क्या कहेंगे आप उनको?
4: इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि फिर आप नहीं बता पाते हैं। इसीलिए तो हम परिवार वालों को कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि वो आपको सब कुछ बताएं, यू नो लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्ट आपने मेरे से क्यों छिपाया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, पर आप ये क्यों नहीं सोचते कि क्यों नहीं बताया। ये तो हम कह देते हैं। कभी कभी कोई ऐसा छोटा सा ही झूठ बोल देता है। समझो आप ऑफिस से घर जा रहे थे, आपको कोई दोस्त मिल गया, आप थोड़ा समय उसके साथ स्पेंड करने लगे, आप घर में लेट पहुंचे। अभी कोई बड़ी बात तो नहीं है, पर अगर आपको पता होगा ना कि सामने से रिएक्शन आना है
3: तो आप नहीं बताओगे।
4: आप कहेंगे ओवर टाइम था, वो अचानक एक प्रोजेक्ट आ गया। अब ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है, कुछ है ही नहीं, आप कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे थे। पर जहां आपको लगता है कि सामने वाला रिएक्ट करेगा, आप छिपाना शुरू कर देते। हम ये तो कहते हैं आपने मेरे से झूठ क्यों बोला, पर हमने कभी ऐसा पूछा कि क्यों झूठ बोला?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Charge Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
4: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
7: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
10: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: श्रवणी लिखती हैं कि अपने बीते हुए कल को कैसे भूलें।
3: आप अपने बीते हुए कल को भूल नहीं सकते हैं, लेकिन उससे जो आपने अंदर में हर्ट क्रिएट किया उसको हील कर सकते हैं। जो चीज हो चुकी है वो डिलीट तो नहीं हो सकती।
2: सही बात है।
3: चाहे वो कितना भी बुरा है, वो सीन आपके पास है, आप उसको ऐसे नहीं भूल सकते, वो डिलीट तो हो नहीं सकती है। लेकिन जरूर आपने उससे दुख लिया है। आप अपने साथ बैठे और अपने को पूछे कि उस सीन ने आपको क्या सिखाया
2: है।
3: जैसे आप उससे कुछ सीख लेते, चाहे वो आपकी रेजिलियंस बढ़ा करके गई, चाहे वो आपको मैच्योर बना करके गई, चाहे वो आपको यही सिखा करके गई कि एकदम ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए,
2: नहीं करनी है।
3: हाँ, आपने कुछ सीखा उससे, फिर वो सीन सुखदाई बन जाती है। तो इसलिए जब आप सीखते नहीं है और उसको बार बार याद करके दर्द क्रिएट करते रहते हैं, वो प्रॉब्लम है। बाकी तो जो हो गया आप उसको कभी भूल नहीं सकते, और जो हुआ था वो परफेक्ट था। आप देखे कि वो सीन आपके लिए क्यों आई थी और वो आपको क्या सिखाने के लिए आई थी।
2: वैसे भी मुझे लगता है श्रवणी की रियर व्यू मिरर को देख के आप आगे गाड़ी नहीं चला सकते। उसको देख के आप खाली ये देख सकते हैं कि पीछे क्या है, लेकिन आपको फोकस आगे ही होना चाहिए।
3: पर वो इम्पोर्टेंट भी तो बहुत
2: इम्पोर्टेंट है कि भाई पीछे एक बार देख लिया, पता है कि भाई ये है, अवॉइड करना है, इतने पे गाड़ी आ रही है पास में, लेकिन गाड़ी आपको आगे देख के चलानी है।
3: पास्ट ऐसा है जैसे फाइलिंग कैबिनेट होता है, आपने बिल्कुल जैसे कहा रियर मिरर है। फाइलिंग कैबिनेट इम्पोर्टेंट बहुत है, पर आप कभी कभी उसको रेफर करते हैं।
2: हाँ, उसी को देख के अपनी जीवन
3: आप आप आज कर, वो कैबिनेट है, कभी आप उसको रेफर करते हैं। ऐसे ही पास्ट रेफरेंस के लिए है।
2: बहुत बढ़िया।
3: सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन।
2: बहुत अच्छा। तो जैसे सिस्टर ने कहा कि लुक बैक ओनली टू लर्न नॉट टू लिव देयर
3: एंड देन अगेन हीलिंग। अभी ये कहने में इजी है, पर हीलिंग के लिए टाइम लगता है। हीलिंग तब होती है जब प्यार से हीलिंग होती है। अब आप कई बार क्या करते हैं, लोग अपनी हीलिंग के लिए किसी मनुष्य से धोखा पाया, फिर किसी मनुष्य के प्यार से अपने को हील करने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा वहां से धोखा मिल जाता है तो और ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। सो अनकंडीशनल सोर्स जो है, जो भगवान का प्यार है, अनकंडीशनल लव है, उससे अपने को हील करने की कोशिश करें, वो इटर्नल सोर्स है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
3: ओह नो,
4: कार खराब.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर नरेश सिंघवी लिखते हैं कि मेरे घर में सिर्फ चार ही लोग रहते हैं और हमेशा झगड़ा होता रहता है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे घर में शांति बनी रहे?
3: झगड़े का कारण ईगो होती है।
2: हाँ,
3: ईगो यहाँ पर जो हम कहना चाहते हैं, ईगो में क्या होता है, मैं राइट हूँ आप रॉन्ग है। तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं
2: जी,
3: कई कई घरों में आप देखेंगे बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट का कारण ही ये है कि आप ये नहीं समझते कि दो जने अलग अलग हैं। तो मैं भी सही हूँ, वो भी सही है, दोनों अपने पर्सपेक्टिव से राइट है। फिर हम वो कर सकते हैं जो हमें ठीक लगता है। जरूरी नहीं है कि हम वो करें जो उनको ठीक लगता है, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट देना, सुनना, आर्ग्यूमेंट की जगह आपस में बैठ करके डिस्कशन करना, वो जरूरी है। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, कोई दो कहता है, हम चार कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्रोध में हमेशा एक अगर अपसेट है तो दूसरे को शांत होना बहुत जरूरी है। हम कई बार कहते भी हैं, मैं बिल्कुल ठीक था, उसने ऐसा किया ना तो मुझे भी गुस्सा आ गया।
2: हाँ, प्रोवोक कर दिया उसने मुझे।
3: उसने प्रोवोक किया, लेकिन वो वही ट्रिगर कर सकता है जो आपके अंदर
2: है
3: ना?
2: हाँ।
3: वो ट्रिगर तो कर सकता है। अब वो गुस्सा कर रहा था, नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा था, आपके पास चॉइस थी। आप प्रोवोक होकर के वापस गुस्सा कर सकते थे, या आप चूज कर सकते थे कि ऑलरेडी एक अगर अपसेट है, इधर अगर हम शांत रहते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, गलत नहीं रिएक्ट करते हैं, सामने वाला थोड़ा समय तक अपसेट रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो भी शांत हो जाता है। वाइब्रेशन इधर खड़े होकर के आप शांति का वाइब्रेशन भी रेडिएट कर सकते हैं।
2: सिस्टर, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक आदमी ट्राई करे कि मैं शांत रहूंगा, आदमी औरत जो भी है, उस बात पे भड़क जाते हैं कि तुम्हें कुछ बोलने को नहीं है, मैं कब से बोल रही हूँ, कब से बोल रहा हूँ, तुम शांत हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, तो ऐसे सिचुएशन में फिर भी शांत बने रहे?
3: जब कोई हर्ट होता है ना तो उसको ये अच्छा लगता है कि सामने वाला भी हर्ट है।
2: मतलब मुझे ही दर्द क्यों है, तुम्हें भी होना चाहिए।
3: वो दर्द देना भी चाहता है ना, हर्ट पीपल हर्ट पीपल,
2: राइट।
3: और फिर उसको अच्छा भी उसी में लगता है कि जब सामने वाला, कई बार आप देखें ईगो सैटिस्फाई हो जाती है।
2: हाँ।
3: कि सामने वाला दुखी है, रोने लगा है, अपोलॉजी मांग रहा है, इतने लेवल तक हो जाता ना, तब कहते हैं इसको आप ठंड पड़ गई, जैसे वो कहने में भी कई बार आ जाता है। अगर आप शांत रहेंगे, हो सकता है वो उनको थोड़ा समय के लिए अच्छा नहीं लगे, जैसे आप गर्म तवे पर अगर ठंडा पानी डालते हैं वो और उछलता है और वो उछलेगा ही, लेकिन अगर आप डालते जाते हैं तो वो तवा ठंडा हो जाएगा। इट इज नॉट अबाउट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट, इट्स अबाउट वो रिश्ता बना रहे।
2: सही बात।
3: अभी आर्ग्यूमेंट आप जीत गए, ईगो आपके सैटिस्फाई हो
2: तो
3: गई, और रिश्ता खराब हो गया और रिश्ता टूट गया, तो फिर मतलब क्या उस चीज का?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस।
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
6: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर कविता जी हैं, लिखती हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए बाहर जाने की बजाय अपने पिता के छोटे से फुटवेयर के व्यवसाय में जुड़ना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता कि वो एक अच्छी और स्थिर नौकरी क्यों नहीं करना चाहता और उसके मन में क्या चल रहा है।
3: ये तो आपको उससे बैठ करके पूछना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, बट एट द सेम टाइम आई फील कि आप जो भी किसी चीज के बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो बताना चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे वो उस बच्चे की चॉइस होनी चाहिए। जरूरी ये होता है कि उसको पसंद क्या है। कई बार छोटे बड़े से ज्यादा भी, अगर कई बार कोई चीज बड़ी भी है पर उसको पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं है वो उसमें सफल होगा। और कभी कभी हो सकता है कोई चीज छोटी भी है पर वो उसके प्रति पैशनेट है, हो सकता है वो इधर कम भी कमाए वहाँ से ज्यादा, पर खुश रहेगा।
2: ये बात जरूरी कि हो सकता है आपने डिसीजन लिया, आप ज्यादा कामयाब नहीं हुए, ज्यादा आपने कमाया नहीं, लेकिन बाद में उसको दोष नहीं देना कि तुम इंजीनियरिंग कर सकते थे। उसकी खुशी देखना ज्यादा जरूरी है,
3: उस बच्चे की खुशी बहुत जरूरी है। हमारे लिए हमेशा जो खुशी का भी पैरामीटर होता है ना, एक्सटर्नल सक्सेस, कितना कमाया। दुनिया में भी यही पूछते हैं, पहले आप कितना कमाते हैं, आपकी वर्थ कितनी है, उससे जज करते हैं वो कितना सफल है। हो सकता है कभी कभी कोई थोड़ा कम भी कमाता है लेकिन वो कंटेंट है, वो खुश है, उसको 10 घंटे भी वो काम करने में अच्छा लगता है, उसकी जरूरतें कम है, तो हर्जा नहीं है। वो उसकी जीवन है, वो अपनी जीवन कैसे जीना चाहता है वो हर व्यक्ति को हक होना चाहिए। हमें अपनी ड्रीम्स या अपने अम्बिशंस हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, पर एज अ मदर अगर आपका कंसर्न है, अभी क्या कारण है उस बच्चे के मन में, क्या है फियर के कारण नहीं जा रहा है, या उसकी ये उसको पसंद है, अगर ये पसंद है, पैशनेट है, तो जाना देना चाहिए। अगर उसको फियर लगता है किसी कारण का, तो धीरे धीरे उसको एम्पावर करना चाहिए कि वो राइट चॉइस कर सके, पर उस बच्चे के मन में क्या है वो पेरेंट बेटर जान पाएंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. Mirchi Mornings has officially begun. Your alarm clock can finally stop screaming at you. Main aa gayi hu. Mera naam hai Priscilla and I'm here to make your mornings more mirchidar and less Monday. Whether you're stuck in traffic, rushing to drop the kids off, pretending that you're prepared for that 9 AM meeting, ya phir standing in your kitchen wondering aaj breakfast mein kya banega, ya phir abhi tak blanket se bahar hi nahi nikle ho. We've got a lot of Bollywood music coming up your way. काफी सारी देसी गॉसिप है, काफी सारी यहाँ वहाँ की बातें हैं, बैक होम की बातें हैं, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं बोल तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हूँ. एंड हे, डोंट जस्ट लिसन टू मी, कम से हाई टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट्स MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर भी हेलो ड्रॉप कर सकते हो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244. देखो, लाइफ बिना यूजर मैनुअल के आती है, लेकिन मॉर्निंग्स हमेशा प्लेलिस्ट के साथ आनी चाहिए. गर्मा गर्म गाने कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स येट अगेन। अब हम चलने वाले हैं थोड़ी सी टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए। 1612 BCE में निनेवे, द कैपिटल ऑफ द माइटी नियो असीरियन एम्पायर, फेल टू द बेबीलोनियंस एंड मेडिस। मतलब एम्पायर का ब्रो इट्स डन मोमेंट आ गया था। 70 CE में रोमन ट्रूप्स डिस्ट्रॉयड द सेकंड टेम्पल इन जेरूसलम। फास्ट फॉरवर्ड टू 1955, किंग ओटो द फर्स्ट डिफीटेड द मैग्यार्स एट द बैटल ऑफ लेखफेल्ड, एंडिंग डेकेड्स ऑफ इन्वेजन। देन 1792 में फ्रेंच Revolution hits another major turning point. King Louis XVI was arrested and the monarchy was overthrown. 1793 May, the Louvre opened its doors to the public for the first time in Paris. Yes, that Louvre. Imagine telling someone back then, future mein log tumhare museum ke bahar selfie lene aayenge. And 1846 May, the Smithsonian Institution was established right here in Washington DC. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein, ye hai Mirchi Mornings. और ज्यादा फन के लिए फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway ki or se, aap aur aapke parivar ko गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली goes down the ground. कोहली goes out of the ground.
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland in this film it's a little different in fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
8: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी कंडीशंस अप्लाई
9: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
7: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इसलिन
10: लिसनर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा
11: बैक टू बैक गाना सुनेगा
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello there. Good morning. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और चलो चेक करते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर आज का वेदर का हालचाल क्या है. बिकॉज आउटफिट डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 70 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स सनी बट इट फील्स लाइक 72 डिग्रीज फारेनहाइट. सो हाँ, वेदर इज ऑलरेडी गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा वार्म्थ. अराउंड नून टू 1 पीएम वील सी सम क्लाउडी कंडीशंस एंड बाय 4 पीएम इट गेट्स पार्टली क्लाउडी. टेम्परेचर वाइज वी आर लुकिंग एट अ लो अराउंड 69 डिग्रीज फारेनहाइट and a high of 91 degrees Fahrenheit today. And the feels like range goes from 71 to 92 degrees Fahrenheit because humidity, sunlight and wind will make it feel a little bit warmer or cooler than actual temperature. Rain ka chance last 24 hours mein 0 millimeters tha. Lekin next 24 hours mein we could see around 7 millimeters of rain. So umbrella ko aaj completely ignored karne ki zarurat nahi hai. Wo ghar mein pada tumko yaad hi karta rahega. Isliye saath mein le jana. And yesterday ka high tha 92 degrees Fahrenheit. Today's high is 91 degrees Fahrenheit. So temperature basically said main same to same hi rehne wala hoon. Chahe life mein sab badal jaye. और बदला वो रूल बिल्कुल नहीं है जहां पर तुम्हें लेयर का प्लेयर बनकर बाहर जाना है. साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू वेयर योर सनब्लॉक एसपीएफ 50++ के साथ वाला. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स. फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड टेल मी तुम्हारा वेदर का मूड कैसा है आज का. व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड and stay hot.

चल चल चल चल चलत चलत जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: सेलिब्रेट आजादी विद ईडन रोव एंड ब्रिंग द फीलिंग ऑफ होम टू यूएसए. फ्रॉम ऑगस्ट 6th टू 16th, एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, वुमेन, किड्स एंड फ्लैट 10% ऑफ ऑन फ्रेग्रेंसेस. विजिट आवर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक, न्यू जर्सी, और शॉप nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155. सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
10: Mirchi, fresh maal.
11: Explosive vibe aur power packed energy ka dose.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग मेरे देसी दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड डिफेंडिंग अ गोल कैन क्रिएट अ होल ट्रैफिक सिचुएशन, ऐसा होता है। उरुग्वाई में एक सेकेंड डिविजन फुटबॉल मैच चल रहा था, व्हेन अ प्लेयर ट्राइड टू क्लियर द बॉल एंड समहाउ बॉल जो है वो स्टेडियम के बाहर सीधा नियर बाय हाईवे पर चली गई। अब हाईवे पर बॉल देखकर एक ड्राइवर ने स्लो डाउन किया, पीछे वाली कार जो है उसने जोर से ब्रेक मारा एंड देन वन कार क्रैश इनटू अनदर। और बेस्ट पार्ट, हाँ इसमें भी बेस्ट पार्ट है, पूरा सीन टीवी पर लाइव कैप्चर हुआ है। इमेजिन यूर peacefully driving and suddenly a football rolls into your lane. तुम क्या सोचोगे यार, भाई गोल तो स्टेडियम में होना चाहिए था, यहाँ पर क्यों हो रहा है? बट रिमेम्बर, स्टेडियम के बाहर भी बॉल को सीरियसली लेना पड़ता है, फुटबॉल इज अ कॉन्टैक्ट स्पॉट। Apparently cars के साथ भी कभी कभी कॉन्टैक्ट हो जाता है। Thankfully no one was injured, no one was harmed, and talking about all things that catch your eye, अगर डायमंड्स तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है तो तनिष्क पर चल रहा है फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहाँ पे तुम्हें मिल रहा है 25% ऑफ डायमंड की वैल्यू पर और साथ साथ में मेकिंग चार्जेस पर। और इतना ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई पुराना गोल्ड है जिसे तुम बहुत टाइम से एक्सचेंज कराना चाहते हो और वो 18 कैरेट से अबव है तो 0% डिडक्शन पर वो एक्सचेंज हो जाएगा एट तनिष्क। सो इफ यू गॉट ओल्ड गोल्ड सिटिंग इन द लॉकर समवेयर, जल्दी से पहुंचो तनिष्क पर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। और अभी आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स, मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin।
11: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, Mirchi Mornings पर मैं हूँ तुम्हारे साथ प्रिसिला और अब टाइम है गोल्ड का लेटेस्ट रेट जानने का.
2: Raj Rose wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,330. $4,330 per ounce के साथ इस मंडे मॉर्निंग में गोल्ड के प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड पर हैं. इससे पहले गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाएं, आइए RajRose.com के साथ गोल्ड एंड सिल्वर बार 1 ounce, 100 grams, 10 ounce और किलो बार्स पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू.
1: एंड देयर यू हैव इट. गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट सुना तुमने सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Desi people. It's time for Mirchi Hour Ka 3 with me, Priscilla, on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Hour Ka 3.
1: सबसे पहले इंडिया के असम में सिचुएशन काफी सीरियस है. फ्लड्स की वजह से डेथ टोल 100 तक पहुंच गया है एंड 1.37 लाख से ज्यादा लोग 7 डिस्ट्रिक्ट्स में अफेक्टेड हैं. गोलाघाट सबसे ज्यादा अफेक्टेड है विद नियरली 70,000 पीपल इम्पैक्टेड. अथॉरिटीज आर रनिंग 125 रिलीफ कैंप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स विद अराउंड 49,000 पीपल स्टेइंग इन देम. नंबर टू पर इंडिया के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक कांवर डेकोरेटेड विथ करेंसी नोट्स हैज गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया. रिपोर्ट्स से द नोट्स वर वर्थ अराउंड 2.70 लाख रुपीस. वीडियो में पुलिस सिक्योरिटी के साथ डिवोटी इज हेविली डेकोरेटेड कांवर को ले जाते हुए दिखाई दिए हैं. एंड फाइनली नंबर थ्री पर क्रिकेट से इंडिया टूर मैच अगेंस्ट श्रीलंका क्रिकेट 11 में मोहम्मद सिराज ने फाइनल ओवर में 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस मार दिए हैं. सिराज ने 15 बॉल्स में अनबीटन 32 बनाकर इंडिया को 6 विकेट विन भी दिलाई है. यशस्वी जायसवाल टॉप स्कोर विद 61 रन्स. और सबसे फनी विजुअल्स, चेस के बाद एक श्रीलंकन प्लेयर ने सिराज का बैट चेक किया. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. इंस्टा और एक्स पर भी मुझसे कनेक्ट किया जा सकता है. माई हैंडल नेम इज मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. WhatsApp का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Celebrate Azadi with Eden Row and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids, and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey, or shop nationwide at us.edenrow.com. Eden Row, a legacy of style.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
2: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
9: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
2: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-307-0668.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है.
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: It's time for Rashi's Own Part 1, only on Mirchi Mornings with me, Priscilla.
2: Mirchi Rashi's Own.
1: It is, yani ki mesh Rashi. Ghar aur family ko thoda sa extra tension chahiye. Kisi loved one ko check in kar lo yaar. Body tension aur back strain se bachna hai, to hero banne ki zarurat nahi hai. Superman bhi kabhi kabhi sofa par baithe baithe so jata hai. Lucky color for you is coral. Lucky number is 14. Taurus yani Rishabh Rashi. Aaj emotional peace is the priority. Stress ko suitcase ke tarah carry mat kiya karo yaar. Upset ho, major decisions ko thoda sa pause karo. Gusse mein resignation aur breakup text dono ही नहीं भेजते हैं. लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन. लकी नंबर ए 6. जेमिनी यानी मिथुन राशि. मून तुम्हारे साइन में है, सो कम्युनिकेशन गेम स्ट्रॉन्ग है. जो दिल में है बोल डालो, वरना माइंड में 47 तरह के टैब्स खुले रहेंगे. थोड़ी सी मेंटल रेस्ट भी जरूरी है, राइट? लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 23. कैंसर यानी कर्क राशि. आज थोड़ा सा डीप रिफ्लेक्शन, व्हाट डू यू एक्चुअली नीड. पुरानी हैबिट्स और इमोशनल ईटिंग से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ. ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना क्लैरिटी दे सकता है. कभी कभी सोल्यूशन गूगल पर नहीं, दोस्त की आवाज में निकल जाता है. लकी कलर फॉर यू इज पर्ल व्हाइट. लकी नंबर इज 9. लियो यानी कि सिंह राशि. सेंसिटिविटी लेवल्स हाई है, सो रिएक्ट करने से पहले ब्रीद. हेल्दी फूड्स एंड रूटीन्स पर फोकस करो. हर कमेंट का रिप्लाई देना जरूरी नहीं होता है, तुम ट्विटर नहीं हो. लकी कलर फॉर यू इज मैरीगोल्ड. लकी नंबर इज 31. वर्गो यानी कन्या राशि. पर्सनल हीलिंग एंड वेलनेस टेक सेंटर स्टेज टुडे. कंफर्ट फूड को थोड़ा सा साइड आय करो एंड बी पेशेंट विथ योर सेल्फ. स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स. एक सैलेड खा लेने से लाइफ सॉर्टेड नहीं होती है, लेकिन हे स्टार्ट तो हो जाता है सॉर्ट होना. लकी कलर फॉर यू इज टील. लकी नंबर इज 18. एंड दैट्स इट फॉर राशिज ओन पार्ट 1. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में. मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे हो तुम. फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. थोड़ी सी देर में लेकर आती हूँ राशिज ओन पार्ट 2. तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

गेम है गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा, रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
11: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
12: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन demand healthcare careers.
13: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome to Rashi Zone Part 2 with me, Priscilla, only on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, प्लान्स शिफ्ट हो सकते हैं और रिलेशनशिप में लिटिल कंफ्यूजन पॉसिबल है। स्क्रीन पे थोड़ा सा अर्ली डिस्कनेक्ट करो और कम्युनिकेट डायरेक्टली विद योर पार्टनर। माइंड रीडिंग का कोर्स अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एनर्जी हाई है, टास्क को क्रश कर सकते हो बट लिमिट को टेस्ट मत करो। और जब भी बाउंड्रीज कोई टेस्ट करे ना तो क्लैरिटी से स्टैंड ले लेना। नाइस होना कंपलसरी नहीं होता हर बार। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 11। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एक्सटर्नल डिमांड्स का मेंटल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। रेस्ट इंटेंशनली लो और अपने ऑप्टिमिज्म को माइनस मत होने दो। हर कैन यू डू मी अ स्मॉल फेवर एक्चुअली स्मॉल नहीं होता है। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 34। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज बैड हैबिट्स को ड्रॉप करने के लिए ग्रेट एनर्जी है। हाइड्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करो एंड वर्क प्लेस बाउंड्रीज क्रिस्टल क्लियर रखो। ऑफिस फैमिली है बट फैमिली को भी कभी कभी सीन पर छोड़ना पड़ता है। लकी कलर फॉर यू इज चारकोल ब्लू, लकी नंबर इज 8। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, होम एंड फैमिली डिसीजंस में एक्स्ट्रा प्लानिंग चाहिए। लॉजिस्टिक्स डबल चेक करो बिफोर कमिटिंग। फिजिकल एनर्जी सॉलिड है लेकिन मेंटल क्लैरिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। गूगल कैलेंडर को इग्नोर करोगे तो यूनिवर्स भी हेल्प नहीं कर सकता तुम्हें। बस लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 42। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस यानी कि मीन राशि, सोशलाइजिंग एंड लाइट हार्टेड प्लान्स कैन लिफ्ट योर मूड। एनर्जी अप एंड डाउन हो सकती है आज के दिन, सो पेस योरसेल्फ। और स्पेंडिंग, फ्रेंड्स के लिए जेनरोसिटी अच्छी है लेकिन तुम्हारा वॉलेट भी थोड़ी फीलिंग्स रखता है। बस लकी कलर फॉर यू इज सी फोम, लकी नंबर इज 16। एंड दैट्स योर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
7: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
6: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Iselin.
8: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, यार मिर्ची मॉर्निंग्स इज रैपिंग अप अगेन. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. लेकिन जाने से पहले आई विल टेल यू दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर योर कम्यूट बैक होम और वेरेवर योर डे इज टेकिंग यू. रशिया हैज सजेस्टेड एक्सप्लोरिंग अ पोटेंशियल रेल राउट टू इंडिया थ्रू तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. अभी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और INSTC इज अराउंड 7200 किलोमीटर्स एंड यूजेस अ मिक्स ऑफ रेल, road and sea routes. It has already helped bring India-Russia freight transit time down from around 40 days to roughly 20 to 25 days. A completely overland rail connection could potentially be even quicker, because you'd cut down on those sea legs and cargo transfers. Kitna fast hoga ye? Exact time travel abhi confirmed nahi hai. It's actually a proposed route. But imagine the logistics. Ek train, multiple countries. Main hoon Priscilla, tumhare saath isi note par I'll sign off Mirchi Mornings per se. Thanks for hanging out with me and making my day even more mirchidar. And don't you disappear. Follow me Instagram or X par bhi. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. Send me your thoughts about everything. Your मॉर्निंग स्टोरीज या फिर बस हेलो प्रिसिला हाउ आर यू ये पूछ सकते हो तो मुझसे. व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची इज माय नंबर 9033647244. राइट नाउ टाटा बाय बाय फ्रॉम मी. यू स्टे कूल, स्टे हॉट एंड ऑफ कोर्स कीप लिसनिंग टू मिर्ची.

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था, तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओ नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू linemtg.com.
3: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
4: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
5: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
4: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
6: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the U.S.
7: Celebrate Azadi with Eden Grove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edengrove.com. Eden Grove, a legacy of style.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं। ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है। लेकिन पता है क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, Kaden, Spider-Man, brand new day आ गई है, and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो, is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं, तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है, वो कहीं भी नहीं देगा, and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers, फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू, एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो, एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
7: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well child visits.
6: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
8: It's 11 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. It's 11:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
9: Listener mein back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: सबसे खतरनाक चीज चेंज नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बदलाव को पहचान ना पाना। और इस वक्त बॉलीवुड बिल्कुल उसी मोड पर खड़ा है। ऑडियंस बदल चुकी है, उसकी पसंद बदल चुकी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि फिल्मों को ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा। हेलो, आई एम सुरेन सुंदरम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, जहां हर हफ्ते सिर्फ गानों की रैंकिंग नहीं बल्कि बॉलीवुड की धड़कन भी सुनाई देती है। शुरुआत कर रहा हूँ विद गाना नंबर 20, विच इज फ्रॉम धुरंधर एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट।
4: नंबर 20।

लेकिन इसके बाद एक बिल्कुल नई एंट्री, टाइटल भी क्वर्की, गाना भी क्वर्की, और जब क्वर्कीनेस की बात हो रही है तो अमित त्रिवेदी से बेहतर नाम मिलना मुश्किल है। उन्हीं का कंपोज किया हुआ, उन्हीं का गाया, कुमार भाई के लफ्जों के साथ नंबर 19 पर डेब्यूइंग राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टाइटल सॉन्ग नंबर 19।

0: Slipping down by one position, Arijit Singh ka gaya Tujhko from Cocktail 2. Lekin apni memories ki hard drive se ek aisa chapter dhoondke nikal raha hoon that is gonna take you back to your friends and time. इंडिया में एक बहुत अजीब सा ट्रेडिशन है, हम फिल्मों की टिकट्स खरीदते हैं और बिना पता चले उनसे अपनी पर्सनालिटी भी खरीद लाते हैं। कभी हेयर स्टाइल, कभी कपड़े, कभी बोलने का लहजा और कभी जीने का तरीका। एक वक्त था जब तीन दोस्त अगर गोवा जाते थे तो लोग बस पूछते थे ट्रिप अच्छा था, लेकिन फिर एक फिल्म आई, उसके बाद हर दोस्तों के ग्रुप को लगा खोआ जाना तो बनता है।
1: ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा।
0: उस फिल्म का नाम था दिल चाहता है। 25 साल पूरे हो चुके हैं इस आइकॉनिक मास्टरपीस को, और सोचो एक फिल्म ने कितनी खामोशी से पूरे देश का एटीट्यूड बदल दिया था। आमिर खान की वो स्टाइलिश दाढ़ी सलोन की रेफरेंस फोटो बन गई, फरहान अख्तर के डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा बन गई। वो सबसे बड़ी बात, उस फिल्म ने हमें सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, कभी कभी साथ बदलने का नाम भी होता है। इसलिए 25 साल बाद भी दिल चाहता है पुरानी नहीं लगती। हर जनरेशन को लगता है कि ये फिल्म तो शायद हमारे लिए बनी थी, और उसी साउंड ट्रैक से एक गाना जो आज भी उतनी ही मुस्कुराहट दे जाता है। दिल चाहता है कि मैंने बहुत सारे गाने आपको सुनाए हैं ओवर द इयर्स, ओवर द एपिसोड्स, लेकिन दिस वन इज द फन सॉन्ग। दिस इज वो लड़की है कहां, शान और कविता जी की आवाज में, माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।
2: टॉप 20 रिवाइंड।

0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
6: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
4: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
8: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
9: I am not going to bed with you ever again.
8: But why? What did I do?
9: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
8: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
9: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
8: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
9: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
10: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची का।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 11।

0: कुछ गाने अच्छे होने के बावजूद वैसे महसूस नहीं होते जितना हमने शायद उनसे उम्मीद लगाई होती है। वे जुनून के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि शायद बात सिर्फ कॉम्पोजिशन की थी ही नहीं। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक दुनिया है, और उस दुनिया की खामोशी, उसका दर्द, उसके किरदार और उसकी तन्हाई, ये सब मोहित सूरी ने बनाई थी। इसलिए जब मोहित और मिथुन साथ साथ आते हैं तो गाने सिर्फ साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं रहते, वो कहानी की धड़कन बन जाते हैं, और शायद मिथुन भी इस बात से वाकिफ हैं।
1: मैं खुद तो एक जरिया मानता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है मोहित सूरी एक ऐसे निर्देशक है जो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि एक धुन की जो बारीकी होती है कि उसको। कई बार मैं एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन होने के नाते, मैं एक अरेंजर भी हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत नामचीन अरेंजर रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इंस्ट्रूमेंट डालूं, मैं इसमें और कुछ करूं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी है मोहित की जो मुझे लगता है वो इसको कभी भी क्या कहते हैं भ्रष्ट होने नहीं देते। वो कहते हैं उसकी सादगी बरकरार रहे, यही हमारा शस्त्र है।
0: इसी पार्टनरशिप ने हमें आशिकी 2 दी, सैयारा दी और बहुत से यादगार लम्हे दिए। लेकिन अगर मोहित सूरी और मिथुन की दुनिया से मुझे सिर्फ एक गाना अपने साथ ले जाना हो तो मेरे लिए हर बार वो गाना होगा एक विलन का, हमदर्द, अरिजीत सिंह की आवाज में। दिस वन इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेज निकलवाता है। एक डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेज निकलवाता है, और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स या एक्शन के लिए याद रखा जाता है।

0: था बंधु फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन नंबर 4 पर है आवारापन 2 का टाइटल सॉन्ग, जिस फिल्म के साथ मोहित सूरी का कोई कनेक्शन नहीं है, और शायद इसलिए जो इम्पैक्ट हम इंतजार कर रहे थे कि ये साउंड ट्रैक क्रिएट करेगा, उस इम्पैक्ट का अब तक थोड़ा इंतजार है। तो क्या है वो चीट कोड म्यूजिक और मूवीज के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन का? मोहित ने खुद उसका राज बताया।
1: सैयारा में भी ये बात बोली जाती है पिक्चर में कि हिट गाने आते हैं चले जाते हैं, 4 महीने बचेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं। जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप, मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है। तो गानों में वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ये गाना बनाओ, सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है। मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रोल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे, मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूं। तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं।
0: यार बस यही फर्क है, और शायद इसलिए आज जब आवारापन 2 आ रही है, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो खुद मोहित सूरी हैं, क्योंकि पहली आवारापन रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन सोचो ना, वक्त के साथ मोहित ने उसे एक कल्ट फिल्म बना दिया। फिर भी एक गाने ने लोगों का दिल जो है वो जीतना स्टार्ट कर दिया है। से दूसरे ही हफ्ते में 5 स्पॉट्स ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई है अमाल मलिक के इस गाने ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, एंड वर्ड्स है रश्मि विराग के। इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर ऑन नंबर 4, दिस इज ये आवारापन। नंबर 4।

0: my God, Chinnari Chinnari after so many weeks has finally climbed to number 2, even though ye ek remake gana hai, even though it has nothing on the original song from BB number 1 starring Salman Khan and Sushmita Sen. Uske bawajood gana jo hai wo track kar raha hai audience ke saath, and that is why itne high spot par hai. But hey, is hafte ek aur baat pata chali and samajh aaya कि कभी कभी बॉलीवुड एक एक्टर को फ्लॉप डिक्लेयर करने की इतनी जल्दी में होता है कि वो भूल जाता है कि ऑडियंस ने तो उसे कब का अपना बना लिया था.
1: कभी कभी

डूड 11 साल बाद इमरान खान अपने कमबैक फिल्म को अनाउंस कर चुके हैं एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई क्योंकि इमरान कभी सुपरस्टार थे ही नहीं लेकिन वो हर कॉलेज की कैंटीन में जरूर रहते थे।

यू माइट नॉट लाइक द फिल्म, लेकिन उनकी फिल्मों में एक ऑनेस्टी थी, एक ऑकवर्डनेस थी जो उन्हें हीरो कम और अपना दोस्त ज्यादा बना देती थी। यस, हर फिल्म नहीं चली। लेकिन शायद इन्हीं फेलियर्स ने इमरान को एक्टिंग से ही दूर कर दिया। लेकिन वक्त का भी अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जिस एक्टर ने रोमांस के साथ करियर शुरू किया था, वो 11 साल बाद फिर एक रोमांटिक फिल्म के साथ ही लौट रहा है। फिल्म का नाम है अधूरे हम अधूरे तुम, एंड देखते हैं कि इस बार कहानी क्या मोड़ लेती है। और जो रोमांस की बात निकली है, तो उस एक्टर की तरफ चलते हैं जिसने इमरान खान के डेब्यू के 2 साल बाद ही खुद डेब्यू किया था, लेकिन आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। नंबर 1 पर एक बार फिर रणवीर सिंह का गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

इसी के साथ एक और काउंटडाउन, एक और बात फिर साबित हो गई है कि हिट्स आते रहेंगे लेकिन सिर्फ वही गाने और फिल्में टिकती हैं जो दिल में अपनी एक स्पेस बना लेती हैं। नंबर वन पर लगातार डोमिनेट कर रहा है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर, बट दैट इज इट फॉर द मिर्ची टॉप 20 दिस टाइम अराउंड।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। हेलो हेलो वेलकम। आज ना मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करूंगी जो कि संजय दत्त की कमबैक फिल्म मानी जाती है। वेल, कहते हैं कि इसी फिल्म ने संजय दत्त को ना एक और लाइफलाइन दी थी एट द बॉक्स ऑफिस। क्या इस फिल्म का नाम पता है आपको? हाँ, नाम ही तो पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं पता तो चलो मैं ही बता देती हूँ नाम। अभी भी नहीं समझ में आया। वेल, इस फिल्म का नाम ही नाम है। इस फिल्म में थी नूतन जी, कुमार गौरव, संजय दत्त, पूनम ढिल्लो, अमृता एंड परेश रावल। वेल, फिल्म का नाम नाम है और सारे रेट्रो फैंस ने आई एम श्योर इस फिल्म को देखा होगा बिकॉज ये संजय दत्त की कमबैक फिल्म थी। और इस फिल्म में अगर एक और खास बात बताऊं, इनफैक्ट ये वाली बहुत ही खास बात है कि ये सलीम जावेद जोड़ी ने अलग होकर के ये फिल्म लिखी थी। जब दोनों यू नो दे पार्टेड वेज, तब ये सलीम साहब की सोलो फिल्म थी। इस फिल्म की स्क्रीन प्ले सलीम साहब ने लिखा, इस फिल्म की स्टोरी सलीम साहब ने लिखी, इस फिल्म के डायलॉग्स सलीम साहब ने लिखे थे। इस फिल्म में ना बहुत ही मज़ेदार कुछ चीज़ें हुई थी। बच्चन साहब ने एक कंडीशन रखी थी, क्या थी वो भी बताऊंगी वापस अश्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: अच्छा, गुड नाइट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म के लिए रूमर था कि शायद बच्चन साहब ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो संजय दत्त और कुमार गौरव का परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलर फिल्म नाम, जिसमें थे संजय दत्त, कुमार गौरव। जब ये फिल्म बनी ना, तो उसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग की रिक्वेस्ट करी विद द मेकर्स ऑफ द फिल्म। वेल, रूमर ये उठा और बहुत सारी मैगजीन्स में ये लिखा गया कि शायद इसलिए क्योंकि बच्चन साहब उस समय संजय दत्त की और कुमार गौरव की परफॉर्मेंसेस देखना चाहते थे, उसे एनालाइज करना चाहते थे। वेल, अगर ऐसा ही होता तो फिर भाई उससे पहले भी जा की बाजी, एक से भले दो, ये दो फिल्में रिलीज हुई थी विच वर मेड विद ऑफ कोर्स कुमार गौरव एंड संजय दत्त। तो तब भी बच्चन साहब ये कर सकते थे ना कि इनकी प्राइवेट स्क्रीनिंग कर दो, उन्हें तो कौन ही मना करता। लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। बताऊंगी आपको ये पूरी कहानी कम राइट बैक। मेरा नाम है श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy.
3: सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy.

ये वाली थ्योरी बिल्कुल भी नहीं चली, क्योंकि ऐसा काम तो बच्चन साहब पहले भी कर सकते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी वेरी फेमस फिल्म जिसका नाम था नाम। इस फिल्म में थे संजय दत्त साहब, इसमें थे कुमार गौरव, नूतन जी, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह, परेश रावल और सलीम साहब की लिखी हुई ये सोलो फिल्म थी। यानी सलीम जावेद ने जब अपनी जोड़ी अलग की तो सलीम साहब की लिखी हुई ये पहली वो फिल्म थी जिसके डायलॉग्स, जिसका स्क्रीन प्ले, जिसकी स्टोरी सब सलीम साहब ने अकेले लिखा था। सो भाई हुआ ये कि जब ये फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो अमिताभ बच्चन जी ने मेकर्स ऑफ द फिल्म से रिक्वेस्ट किया कि मुझे ना इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग देखनी है। सो पीपल थॉट कि ओहो बच्चन साहब ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि शायद वो थोड़े इनसिक्योर्ड हैं कि यू नो संजय दत्त वापस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके एक तरीके की एक कमबैक फिल्म थी। सो ही वांट्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कुमार गौरव एंड संजय दत्त। लेकिन फिर लोगों ने ये भी कहा कि अगर ऐसा ही होता तो जान की बाजी, एक से भले दो, ये दो फिल्में भी पहले इन एक्टर्स के साथ रिलीज हो चुकी थी तो बच्चन साहब पहले भी ये रिक्वेस्ट कर सकते थे। फिर आखिर माजरा क्या था? माजरा एक्चुअली में ये था कि बच्चन साहब देखना चाहते थे कि सलीम साहब ने अकेले कैसी फिल्म बनाई है, जब वो जावेद साहब के साथ नहीं है, उनका स्टोरी कैसी है, उनका स्क्रीन प्ले कैसा है, उनके डायलॉग्स उन्होंने अकेले कैसे लिखे हैं एंड क्या उनको पसंद आई या फिर नहीं आई, इसके पीछे भी इट्स अ लवली स्टोरी। कम राइट बैक, आई लेट यू नो। मैं हूँ श्रेया, only on Purani Jeans.

सबकी बहुत तारीफ करी, उनको डिनर पे भी ले गए, लेकिन सलीम साहब को कुछ नहीं कहा, पर सलीम साहब समझ गए। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, और आज नाम फिल्म की बात हो रही है। हाँ जी, संजय दत्त वाली नाम, या फिर आप कह सकते हो कुमार गौरव वाली नाम, नूतन जी वाली नाम, पूनम ढिल्लो वाली नाम, अमृता सिंह वाली नाम, ये सारे एक्टर्स इस फिल्म में थे। एंड इस फिल्म को प्राइवेटली देखने की रिक्वेस्ट करी थी अमिताभ बच्चन ने विद द मेकर्स ऑफ द फिल्म। सो एवरीबडी थॉट कि शायद वो कुमार गौरव और संजय दत्त को देखना चाहते हैं, एज इन उनका एक्टिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली यू नो इस फिल्म में देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, शायद वो इनसिक्योर है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक्चुअल में बात पता है क्या थी, बच्चन साहब देखना चाहते थे कि उनके इतने पुराने दोस्त सलीम खान ने ये पिक्चर अकेले कैसे लिखी है, बिकॉज दिस वॉज द फिल्म, द फर्स्ट फिल्म जो सलीम खान ने लिखी थी जावेद साहब से अलग हो करके। ये जोड़ी जब अलग हो गई तो सलीम साहब ने नाम के डायलॉग्स लिखे थे, इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, इसकी स्टोरी लिखी थी अलग, एकदम सोलो विदाउट जावेद अख्तर। सो बच्चन साहब वॉन्टेड टू सी कि उनके दोस्त ने कैसा काम किया है अकेले, एंड उनको इतना पसंद आया कि वो उस रात इस फिल्म के सारे कास्ट एंड क्रू को डिनर पे ले गए और उनकी बहुत तारीफ की। एक नोट भी, एक हैंड रिटन नोट भी दिया टू द कास्ट एंड क्रू ऑफ दिस फिल्म नाम, लेकिन उन्होंने सलीम साहब को कुछ नहीं कहा। जब सलीम साहब को ये बात पता चली सलीम साहब समझ गए कि भाई अमिताभ बच्चन को ये फिल्म पसंद आई है। वो कहते हैं ना कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू एंड एक्चुअली नो तारीफ। आपका दोस्त समझ जाएगा कब आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। पुरानी जींस पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

इस फिल्म के बहुत सारे सीन्स सलीम खान ने अपने घर से ही उठाए थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम, जिसमें थे कुमार गौरव और संजय दत्त। तो अगर आप ये फिल्म देखो ना, आपको दिखेगा कि संजय दत्त कुछ कपड़ों पे आयरन कर रहे हैं और उनको घसीट करके ना उन्हीं कपड़ों को कुमार गौरव पहन लेते हैं और उसके बाद दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है कपड़ों को लेकर के। सो एक्चुअली में ये सीन सलीम खान ने अपने घर में देखा था जब सलमान, अरबाज और सोहेल में एग्जैक्टली इस बात पे लड़ाई होती थी कि कोई कपड़े आयरन करता था और दूसरा बंदा ना उन्हीं आयरन क्लोथ्स को पहन लेता था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। वेल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ जब राजेंद्र कुमार, जो कि इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे, नाम में पैसा लगा रहे थे, वो गए थे स्क्रिप्ट को सुनने सलीम खान के घर। आई विल लेट यू नो। वापस श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Celebrate Azadi with Eden Row and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Row, a legacy of style.
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
9: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम,

कई बार ना आपकी जुबान को कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं होती है, बस आपकी आंखों का इशारा काफी होता है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। वेल, इसमें थे कुमार गौरव, संजय दत्त, नूतन जी, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लो एंड अदर्स। लेकिन सबसे खास बात इस फिल्म की ये थी कि इसको सलीम साहब ने इंडिपेंडेंटली लिखा था, यानी जब सलीम जावेद की जोड़ी टूटी, जब दोनों लोग अलग अलग रास्ते पे निकल गए, तब सलीम साहब की पहली सोलो फिल्म थी जो उन्होंने लिखी अकेले। यानी इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा, इस फिल्म की स्टोरी लिखी। अब कहते हैं कि सलीम साहब की ये कहानी सुनने के लिए राजेंद्र कुमार, जो कि इस फिल्म में पैसा लगाने वाले थे, ये स्क्रिप्ट सुनने के लिए उनके घर गए। तो स्क्रिप्ट में उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस, क्योंकि राजेंद्र कुमार बहुत सारे चेंजेस बताते थे, स्पेशली जब उनके बेटे कुमार गौरव हों इन द फिल्म, सो उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस बताने शुरू किए। अब सलीम साहब तो ऑलरेडी इतनी हिट फिल्में दे चुके थे, दीवार हो, शोले हो, सो मैनी ऑफ देम। तो जब उन्होंने चेंजेस बताए और सलीम साहब सामने के सोफे में एक कोने पे बैठे हुए थे, उन्होंने बस कहते राजेंद्र कुमार को देखा और राजेंद्र कुमार समझ गए कि ना ना ना ना, ये काम सलीम साहब के साथ नहीं करना है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, कोई चेंजेस नहीं भाई, जैसा आप लिखेंगे वही होगा। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक और इंस्टा, RJ श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल, RJ SHRUYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
6: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बहुत कोशिश करी राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को ये समझाने के लिए कि इस फिल्म में मेन लीड उन्हें करना चाहिए। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। ये फिल्म जो कि संजय दत्त की कमबैक फिल्म भी मानी जाती है और उनके करियर का यू नो टर्निंग पॉइंट भी मानी जाती है। राजेंद्र कुमार जी ने ऑफकोर्स भाई फिल्मों की बहुत समझ थी और वो इस फिल्म को बना भी रहे थे, प्रोड्यूस भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा कुमार गौरव इस फिल्म में मेन लीड में हो, एंड ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि ही न्यू कि कहीं ना कहीं कुमार गौरव का करियर, उनका फिल्मी रास्ता जो है वो थोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन कुमार गौरव ने मेन लीड लेने से साफ मना कर दिया। What was the reason? बहुत ही खूबसूरत रीजन है जो मैं आपको कुछ गानों के उस पार बताऊंगी। Come right back, मैं हूं श्रेया, only on पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: It's 2:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
7: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दोस्ती की जीत हुई, करियर के आगे दोस्ती चुनी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम। ये जो फिल्म थी ये कुमार गौरव के पापा यानी राजेंद्र कुमार ने बनाई थी, एज इन प्रोड्यूस करी थी। अब भाई उन्होंने ये फिल्म बनाई कुमार गौरव के लिए इसलिए थी कि वो चाहते थे कि उनके शेकिंग करियर को, उनके बेटे के लड़खड़ाते हुए बॉलीवुड करियर को थोड़ी लाइफलाइन मिले। और दैट्स व्हाई ही वांटेड कि दोनों कैरेक्टर्स में से उनका बेटा कुमार गौरव फिल्म का मेन लीड वाला रोल ले। लेकिन कुमार गौरव ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका करीबी दोस्त, उनका बेस्ट फ्रेंड संजय दत्त ये रोल करे। संजय दत्त का करियर भी उस समय काफ़ी शेक हो रहा था। इनफैक्ट नाम उनकी कमबैक फिल्म मानी जाती है। कुमार गौरव को ये बात पता थी कि उनका दोस्त जो है वो अगर मेन लीड में आया तो उनके पास इतनी तारीफ नहीं आएगी, तारीफ जाएगी संजय दत्त के पास। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पापा को समझाया एंड इस फिल्म में सेकंड लीड ली। ऑफकोर्स उनके काम को बहुत तारीफ मिली, लेकिन हाँ लाइमलाइट संजय दत्त ले गए थे। ऐसी दोस्ती सुनी है पुरानी जीन्स पे। मैं हूँ श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे भी हूँ, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल, आरजे SHREYA विद लव।

महेश भट्ट जी के करियर की भी ये टर्निंग पॉइंट थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम। संजय दत्त की फिल्म थी ये, इसमें थे कुमार गौरव, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह एंड परेश रावल। अच्छा, महेश भट्ट के लिए ये फिल्म इसलिए खास थी क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने फिल्में बनाई थी, एक थी अर्थ 1982 की और दूसरी थी सारांश 1984 की, और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास काम नहीं किया था। लेकिन हाँ, नाम ने इतना अच्छा काम किया कि उसके बाद महेश भट्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ गुड डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री। इस फिल्म की दो खास बातें और थी। नंबर वन, ये सलीम साहब की इंडिपेंडेंटली लिखी हुई पहली फिल्म थी। जब सलीम जावेद की जोड़ी टूटी तो सलीम साहब की ये फर्स्ट फिल्म थी जो उन्होंने एज अ सोलो राइटर लिखी थी। इस फिल्म के डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब सलीम साहब ने अकेले लिखी थी। और दूसरी, ये संजय दत्त के भी करियर का टर्निंग पॉइंट थी। ये उनकी कमबैक फिल्म थी क्योंकि इससे पहले 5 फिल्में जो उन्होंने करी थी वो सब एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म नाम की बातें चलती रहेंगी। मेरा नाम है श्रेया। इनकेस आपको मुझसे कुछ बात करनी है ऐसे 1-to-1, तो फेसबुक और इंस्टा पे RJ श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
7: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
6: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: Number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ नाम फिल्म की बात हो रही है। अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये मुझे लगता है कि ये रिलीज तो इस फिल्म के साथ हुआ था इन 1980s, लेकिन आज भी पंकज उदास जी का जब ये गाना सुनो ना, आपको कोई ना कोई ऐसा दोस्त या कोई ना कोई ऐसा यार, कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर याद आ जाता है जो कभी आपको कुछ लेटर्स लिखता था। एंड यू नो वॉट, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि मूवी थिएटर्स में उस समय हंगामा होता था कि इस गाने को फिर से चलाया जाए। तो आफ्टर द मूवी नाम यूज़ टू फिनिश, इस गाने को फिर से रीरन किया जाता था। एंड स्पेशली क्योंकि उस टाइम पे ना मिडल ईस्ट से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे, तो वो इस गाने के साथ बहुत कनेक्ट कर पाते थे। एंड द सॉन्ग इज चिट्ठी आई है आई है, पंकज उदास जी का ये गाना। ओहो, इसको ना थोड़ा सा आंख बंद करके कोई खास हो उसको याद करते हुए जोर से सुनना। पुरानी जींस पे मैं हूँ श्रेया।

राजेंद्र कुमार हमेशा अपने प्रोडक्शन में जरूर होते थे कहीं ना कहीं, लेकिन इस फिल्म में नहीं थे क्योंकि इस फिल्म में उनके सूटेबल कोई रोल ही नहीं था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। वेल, इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे राजेंद्र कुमार और उनके बेटे कुमार गौरव भी। सो राजेंद्र कुमार का ये सेट रूल था कि वो अपने प्रोडक्शन वाली फिल्मों में ना कहीं जरूर आते थे, लेकिन इस फिल्म में नहीं आए। बहुत कोशिश की उन्होंने कि कोई छोटा मोटा कैरेक्टर बना लें, लेकिन नहीं सूट बैठा। सो उनके बेटे कुमार गौरव ने भी कहा कि नहीं नहीं, ये फिल्म आपके बिना ही बन जाएगी। पुरानी जीन्स पे नाम फिल्म की बातें हो रही हैं, सो डोंट यू गो एनीवेयर। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
10: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

दोस्तों, कभी नोटिस किया है, मंडे की मॉर्निंग और मंडे की इवनिंग दोनों बिल्कुल अलग लोग होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वो इसीलिए क्योंकि मंडे मॉर्निंग में ना हम अलार्म से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, कॉफी भी काम जैसी लगती है और इनबॉक्स देखकर तो लगता है कि अरे रे, वीकेंड इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। लेकिन मंडे की शाम तक पिक्चर थोड़ी सेटल हो जाती है, मीटिंग्स हो चुकी होती है, ईमेल्स का शौक भी निकल चुका होता है और अब बस घर पहुंचने की रेस चल रही होती है। और मुझे ना इसीलिए मंडे इवनिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार ये वीकेंड और नए हफ्ते के बीच का वो प्यारा सा हैंडशेक होता है, एक रिमाइंडर होता है कि चलो एक और नया चैप्टर शुरू हो गया। तो आज ड्राइव थोड़ी आराम से कीजिए, प्लेलिस्ट थोड़ी लाउड रखिए और स्माइल करना मत भूलिए। और मुझे जरूर बताइए कि आज की मंडे की शाम को रिलैक्स करने के लिए आपका बॉलीवुड गो टू सॉन्ग कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा बॉलीवुड गो टू सॉन्ग ये रहा आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं। उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
1: कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
11: Famous Indian astrologer, Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
14: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

गानों की ना एक अलग ही दुविधा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ना गाना याद रह जाता है लेकिन फिल्म ही याद नहीं रहती, और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में या रेडियो पर एक गाना बजता है और दिमाग तुरंत बोलता है कि अरे वाह क्या गाना है, पर अगला सवाल शुरू हो जाता है कि ये किस मूवी का गाना था, और बस फिर पूरा बॉलीवुड क्विज शुरू हो जाता है। कोई एक्टर याद आ जाता है, कभी कोई सीन याद आ जाता है, कोई कॉस्ट्यूम तक याद आ जाता है, लेकिन मूवी का नाम लास्ट में याद आता है। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सॉन्ग्स इतने पावरफुल होते हैं कि फिल्म भले ही भूल जाओ लेकिन गाने नहीं भूलते। वैसे आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड गाना है जिसका ट्यून आपको अच्छे से याद है लेकिन मूवी का नाम याद करने में सदियां लग जाती है। डीएम मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं अगला गाना आप कौन सी मूवी का है ये पहचान पाते हो या नहीं। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
6: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well child visits.
5: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 4:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: कभी किसी ट्रेलर को पॉज करके दोबारा देखा है? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पहले ना ट्रेलर से फिल्म आ रही है यही बताता था, लेकिन अब ट्रेलर डिटेक्टिव गेम बन चुका है। मतलब पहले एक फ्रेम देखो, फिर कमेंट्स पढ़ो, और फिर पता चलता है कि लोगों ने उस एक सेकेंड में ना पूरी थियोरी बना दी है। जी हाँ, कि यार यही कैरेक्टर विलन होगा, इस सीन का कनेक्शन पहली वाली फिल्म के साथ था। मुझे तो लगता है बॉलीवुड फैंस से अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स दुनिया में ही मिल ही नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी ट्रेलर से ज्यादा एंटरटेनिंग तो यार उसके कमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी वो कमेंट्स पढ़े हैं तो मुझे जरूर बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट क्या थे। वैसे आप ट्रेलर देखते हुए किस चीज पर सबसे पहले ध्यान देते हो? क्या वो म्यूजिक होता है, डायलॉग होता है, एक्शन होता है, या फिर माई फेवरेट कॉमेंट सेक्शन? डीएम मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब ट्रेलर नहीं, सीधा फुल एंटरटेनमेंट। अगला बॉलीवुड गाना ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मिर्ची फ्रेश माल, एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Cadence, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
7: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी डीप खाओ तो जानो
11: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
13: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है एक ही होता है जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

ओटीटी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या होता है? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो कहना कि बस एक एपिसोड और, ये सेंटेंस बोलते ही ना इंसान ऑफिशियली 2 घंटे के लिए अनअवेलेबल हो ही जाता है, क्योंकि एक एपिसोड खत्म होता है, स्क्रीन पूछती भी नहीं और अगला शुरू हो जाता है, और हम सोचते रहते हैं कि ठीक है यार इस बार लास्ट एपिसोड, और फिर देखते ही देखते रात के 1:30 कब बज जाते हैं समझ ही नहीं आता। और शायद इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म को हमसे ज़्यादा हमारी सेल्फ कंट्रोल पे भरोसा होता है, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये लोग स्किप नहीं करने वाले, अगला एपिसोड बजेगा ही। वैसे आपके घर में बिंज वॉच चैंपियन कौन है? टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। क्या वो आप हो, आपके स्पाउस हो, या वो दोस्त जो पूरी सीरीज एक वीकेंड में खत्म कर लेता है? फिलहाल ओटीटी एपिसोड नहीं, लेकिन ये अगला बॉलीवुड गाना जो आप स्किप नहीं कर सकते, सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हर सीजन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और समर की पर्सनालिटी मुझे सबसे ज्यादा फिल्मी लगती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और दिन लंबे होते हैं, शामें धीरे धीरे उतरती है और लगता ही नहीं कि घर जाने की कोई जल्दी है। पार्क्स में बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई आइसक्रीम लेकर वॉक कर रहा होता है, कोई यार लॉन चेयर निकाल कर बस हवा इंजॉय कर रहा होता है। और मुझे ना समर की सबसे प्यारी बात ही यही लगती है कि ये सीजन हमें घर से बाहर निकलने का बहाना दे ही देता है। कोई ग्रैंड प्लान की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस एक छोटी सी इवनिंग ड्राइव भी पूरे दिन का मूड चेंज कर देता है। तो आज अगर घर जाते वक्त थोड़ा लंबा रूट मिल जाए तो शायद शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं। और बताइए दोस्तों, समर की कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो कंप्लीट ही नहीं लगता? आइसक्रीम, बारबेक्यू, लॉन्ग ड्राइव्स या सनसेट वॉक्स? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मेरा तो कोई भी सीजन एक प्यारे से गाने के बगैर कंप्लीट ही नहीं लगता। तो चलिए बजाते हैं वही गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट?
2: हाँ.
3: वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000.
2: हाँ.
3: वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो.
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: मुझे नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो ना, वहीं
3: आके आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी. और बैंक हमारा मिर्ची का है, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
3: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
13: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
16: Listener mein back to back gana sunega.
17: Back to back gana sunega.
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: sets 5:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन। बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया। डार्क इमोशंस, सोलफुल म्यूजिक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्ले लिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे, क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंड ट्रैक बन जाते थे। और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो। क्योंकि कुछ मेलोडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशन्स बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूँ तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और चलिए, एक ऐसी आवाज जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं ये आवारापन राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मिर्ची फ्रेश माल।
4: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो। उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: This is the tribute to Talaiwa from King Khan and one and only
2: Jayo Honey Singer.

कितने बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कॉफी पीने निकले थे, लेकिन वापस आते आते जिंदगी के बड़े डिसीजंस भी ले लिए। शाम शाम लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और नाम सुना मुसाफिर कैफे। और मुझे लगा कि यार कैफे का असली मेन्यू कॉफी थोड़ी ना होता है, वो तो कॉन्वर्जेशंस होते हैं। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज मुसाफिर कैफे, जिसमें विक्रांत मेसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आ रही है। कहानी तो वैसे कैफे से शुरू होती है, लेकिन असल में बात उन लोगों की है जो जिंदगी के सफर में मिलते हैं, कुछ पल साथ रहते हैं और फिर हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि यार कॉफी के कॉन्वर्जेशंस ही ऐसे होते हैं, कोई पहली बार आई लाइक यू बोलता है, और कोई कभी कभार मुझे बस एक बात बतानी है से शुरू करता है। किसी टेबल पर दोस्ती शुरू होती है तो किसी दूसरे टेबल पर टेक केयर बोल के लोग अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। कभी किसी को नई जॉब मिलती है, कभी स्टार्टअप का आइडिया बनता है, कभी शादियां फिक्स होती है, तो कभी बस दो दोस्त 3-4 घंटे तक दुनिया भर की बातें करते रहते। लेकिन पता है सबसे मजे की बात क्या है कि सालों बाद ना कॉफी की टेस्ट याद रहे या ना रहे, लेकिन उस टेबल पर हुई हर कॉन्वर्जेशन वर्ड बाय वर्ड याद रहती है। वैसे दोस्तों, आपने भी ऐसी कॉन्वर्जेशंस कई बार की होगी, तो ऐसे किसी कैफे का नाम अगर आपको रखना हो तो वो क्या होगा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मुसाफिर कैफे क्या आपने भी देखी, जरूर बताना। और तब तक ऐसा बॉलीवुड का गाना सुनते हैं जो हर कॉफी डेट और हर दिल की बात को और भी खूबसूरत बना देता है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana.
2: ¡Rámbala!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Milchi, murga! ¡Acá!
3: हेलो,
4: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहे
4: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
4: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
3: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
4: नहीं,
3: है?
4: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
3: तो
4: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
3: पूरी
4: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
3: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
4: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
3: ये कॉपी मुझे भी भेजना
4: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
3: अपने फ्रेंड्स से, उनको भी भेज।
4: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
3: हाँ बिल्कुल बताइए।
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Inefficient,
9: very complex,
10: clumsy or
11: confusion.
8: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
14: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Tera kya hoga, Kalia?
19: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
18: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi.
0: It's hot.

की टाइम। कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका यूएसए फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहां हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेन्स वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: झुमका?
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
11: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
13: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
15: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है.
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: aired 6:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shaldar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कुछ जोड़ियां स्क्रीन पर नहीं सीधा दिल पर लिख जाती है, और ऐसी ही एक जोड़ी है अलका याग्निक और सोनू निगम की। और उनका गाना तुम ही देखो ना फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, वो इमोशंस लेकर आता है जो हम बोल नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। अब सोनू निगम की आवाज जैसे दिल की कन्फेशन, और अलका जी की आवाज जैसे उस कन्फेशन को समझने वाली खामोशी। और स्क्रीन पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की आंखों में वही अनसेड कहानी, उफ। तो चलिए शाम को थोड़ा फील करते हैं उन्हीं इमोशंस के साथ। और आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सा सोनू निगम और अलका याग्निक डुओ का आपका फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए तुम ही देखो ना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Peter Parker.
1: Okay then, Spider-Man Brand New Day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
2: spiders have three life cycles
1: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Celebrate Azadi with Eden Rove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrove.com. Eden Rove, a legacy of style.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
8: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road Iselin
9: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार
10: लिसनर एम आई बैक टू बैक गाना सुनेगा
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: Nasha ye

की टाइम। कुछ लोगों को देखते ही ना लगता है कि इन्हें अलग दिखने के लिए कभी एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते होंगे। वो कहते हैं ना, सम थिंग्स शाइन विदाउट ट्राइंग। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी की स्माइल, कभी उनका कॉन्फिडेंस, तो कभी बस उनकी प्रेजेंस। और वही बात चीजों पर भी लागू होती है। मतलब कुछ चीजें ना ट्रेंड्स के साथ नहीं चलती, वो हर दौर में अपनी चमक खुद लेकर आती है। और शायद इसीलिए डायमंड्स को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, टाइमलेस एलिगेंस कहा जाता है। और अगर आप भी अपनी कलेक्शन में वो हमेशा वाली चमक ऐड करना चाहते हो तो तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, अवेल अप टू 25% ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और ओल्ड गोल्ड अबाव 18 कैरेट एक्सचेंज करने पर 0% डिडक्शंस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और दोस्तों मुझे भी बताना कि आपके हिसाब से किसी इंसान की सबसे खूबसूरत क्वालिटी क्या होती है, उनकी स्माइल, उनका कॉन्फिडेंस या उनका काइंडनेस। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसकी चमक कभी पुरानी नहीं होती। Only on Mirchi, it's hot. Damn.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 7 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Sham Shandar. Let's do not donkey. Have a funky time.
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और अगर बॉलीवुड रोमांस का एक ड्रीमी वॉलपेपर होता तो बैकग्राउंड में ये गाना जरूर होता, सूरज हुआ मध्यम। कभी खुशी कभी गम का ये ट्रैक प्योर लव का स्लो मोशन वर्जन है। जी हाँ, सोनू निगम की स्मूथ वॉइस जैसे सनसेट और अलका जी की आवाज जैसे उस सनसेट के ब्यूटीफुल कलर्स, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और काजोल, मतलब रोमांस का एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जी हाँ, अगर आज मूड थोड़ा ड्रीमी है तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ड्रीमी म्यूजिक जोड़ी कौन सी है, टेल मी ऑन इंस्टाट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते उनके भी गाने यहां पर। फिलहाल आपके लिए सूरज हुआ मध्यम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. ¡Rábala! ¡Murga, murga! ¡La virpa la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¡Hola!
3: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है, ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है, अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है
4: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: Oh no!
13: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

एनीटाइम। संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं पर सीधा दिल को टच कर जाते हैं। रिफ्यूजी का पंछी नदियां पवन के झोंके, ये एक ऐसा गाना है जो सफर जैसा लगता है, क्योंकि उसमें सोनू निगम की आवाज यानी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रॉ जैसे खुला आसमान, और अलका जी की आवाज यानी सॉफ्ट सूदिंग जैसे हल्की सी हवा, और स्क्रीन पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की इनोसेंस और ये मेलोडी यानी प्योर मैजिक। तो चलिए थोड़ा सा सिंपल प्यार फील करते हैं सोनू निगम और अलका जी की इस अनोखी जोड़ी के साथ फॉर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। लेकिन दोस्तों आप ही बताना कि कौन सा गाना है जो आपको इंस्टेंटली काम कर देता है, स्पेशली इस पावरफुल म्यूजिकल डुओ का, सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का। तो चलिए फिलहाल पंछी नदियां सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
8: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.
10: Celebrate Azadi with Eden Grove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edengrove.com. Eden Grove, a legacy of style.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
12: अब मिर्ची खा.
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: जाएगी।
1: It's 7:30 PM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
3: संगीत ने बना दिए एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक में हमारी भी बहुत सारी ऐसी फेवरेट जोड़ियां हैं जो यार इतने धमाकेदार गाने हमें दे चुके हैं। और उन्हीं में से एक है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की जोड़ी। और यार उनके कुछ गाने सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इंटेंस और फिल्मी और फुल पैशन वाले भी है, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का, बनके तेरा जोगी। ये गाना प्योर जुनून वाला, प्यार वाला गाना है ये। जी हाँ, सोनू निगम की पावरफुल आवाज़, जैसे कि फुल ऑन कमिटमेंट, और अलका याग्निक जी की आवाज़ उस कमिटमेंट को सॉफ्टनेस देती हुई। और जब स्क्रीन पे शाहरुख खान और जूही चावला का प्लेफुल रोमांस दिखता है तो यार ये गाना ना और भी ज़्यादा अलाइव हो जाता है। तो अगर आपको भी वो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाला इंटेंस प्यार पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा गाना आपका फुल्ली फिल्मी लव डिफाइन करता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक के पावरफुल कपल का, यानी सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का, बन के तेरा जोगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Cadence, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, a.k.a. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
7: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road Islington
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com
10: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
14: एक ही होता है
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

की टाइम। मिर्ची मंडे ग्रुप ऑलरेडी लॉक और वीक का रिदम दोस्तों सेट हो चुका है विद दिस शो शाम शानदार लाइव विद योर वन एंड ओनली मिर्ची सिद्धि। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको टाटा बाय बाय सायोनारा कह दूं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हमारी रोशनी आने वाली है लव के कुछ फंडे लेकर। क्योंकि यार अगर आज के लोकल अपडेट्स, म्यूजिक, ओटीटी पिक्स के साथ अगर आपका मूड सेट हो चुका है तो थोड़ी यार लव लाइफ पे भी ध्यान दे दो विद रोशनी के फंडे। तो कहीं ना जाइए, बने रही हमारे साथ right here on Mirchi. This is Mirchi Siddhi signing off.